0: आवाज
1: हर वक्त आपके संग आपका दमसाज
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो.
3: You're listening to Bradford Asian Radio
4: 1413 AM and online.
5: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: Mubarak Eid, Mubarak.
9: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274488777
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाए
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
10: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
11: बालियां अंगूठियां और हार
10: जो दुल्हन करे सिंगार
11: आज ही मामू काके की दुकान
10: खालिस सोने की पहचान
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
11: आपकी शान
10: हमारी आन
11: क्वालिटी की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ओकलेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर
14: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
13: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड BD88AX फोन ब्रैडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
14: मैनिंगम सुपर स्टोर
15: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
15: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
16: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
17: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677. Mubarak Eid Mubarak.
1: एशियन रेडियो के सभी सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से दिली

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3489। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
4: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
3: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
4: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
3: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
4: 07548419678।
3: एशियन वेडिंग्स UK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: यू आर लिस्निंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
9: 1413 AM एंड ऑनलाइन।
10: यू आर लिस्निंग टू
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: Mubarak Eid Mubarak.
9: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 488 77
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाए
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
10: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
11: बालियां अंगूठियां और हार
10: जो दुल्हन करे सिंगार
11: आज ही मामू काके की दुकान
10: खालिस सोने की पहचान
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
11: आपकी शान
10: हमारी आन
11: क्वालिटी की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk.
14: Safeway You're listening Rider. To...
15: Bradford Asian Radio on 1413

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्थ लेन, BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3499, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: Mubarak Eid Mubarak.
9: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाई
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
10: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
11: बालियां अंगूठियां और हार
10: जो दुल्हन करे सिंगार
11: आज ही मामू काके की दुकान
10: खालिस सोने की पहचान
11: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
11: आपकी शान
10: हमारी आन
11: क्वालिटी की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
10: ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
13: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
14: ओपन 7 डेज 10 टिल 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड ब्रैडफोर्ड 9627229627
13: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
15: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
16: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
15: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
16: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
17: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
18: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
19: जीने का सीख ले ढंग ढंग कर नफ्स से अपने जंग जंग वरना चढ़ जाएगा जंग जंग हो जा मुर्शिद के संग

जा रंग जा इश्क नबी में रंग जा रंग जा ओ यारा रंग जा रंग जा इश्क नबी में रंग जा ओ यारा रंग जा रंग जा जेड़ा इश्क नबी दा पांदा है ओनू रंग लग जांदे।

तुम्हारे लिए मकीनों मका, तुम्हारे लिए चुनिनो छुना, तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए रहमे जबां, तुम्हारे लिए बदन में हिजां, तुम्हारे लिए हम आए यहां, तुम्हारे लिए उठे भी वहां, तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक समको समक किसी का निशान, तुम्हारे लिए इशारे से चांद को घेर दिया, छुपे हुए हुर को फेर लिया, कहे हुए दिल को असली किया।

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 कुवत लेन, बीडी नगर।
1: ईद मुबारक।
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को

0: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
1: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
0: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
1: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
0: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
1: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
0: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
2: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
1: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
0: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: यू आर लिसनिंग टू ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
8: 1413 AM एंड ऑनलाइन।
9: यू आर लिसनिंग टू
10: Bradford Asian Radio on
11: 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorised and regulated by the FCA.
8: Mubarak Eid Mubarak.
9: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274488777
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाई
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
10: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
11: बालियां अंगूठियां और हार
10: जो दुल्हन करे सिंगार
11: आज ही मामू काके की दुकान
10: खालिस सोने की पहचान
11: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
11: आपकी शान
10: हमारी आन
11: क्वालिटी की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकफट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
14: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
15: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
16: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
15: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
16: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
17: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: You're listening to
18: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
19: क्यों चमन में बेसदा मिसल रिम शबनम है तू लब कुशा हो जा सरूदे बिरब्त आलम है तू

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

मैं सुनिया है बड़ा औखा है बरज़ख दा सफर यारा।

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का

0: बार धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
1: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
2: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
0: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
11: Nasima janibi batha gutharkun za ahwalam Muhammad ra khabarkun babru injani mushtaqan daranja fida'i rawza'i khayr.

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: Mubarak Eid, Mubarak.
9: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाए
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
10: नित नए डिजाइन के सेट्स चूड़ियां कंगन कांटे
11: बालियां अंगूठियां और हार
10: जो दुल्हन करे सिंगार
11: आज ही मामू काके की दुकान
10: खालिस सोने की पहचान
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
11: आपकी शान
10: हमारी आन
11: क्वालिटी की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स
12: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
13: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
12: सोफी ज्वेलर्स
13: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
12: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
14: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
15: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
14: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
15: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
16: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
17: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात।

0: दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
1: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: Mubarak Eid, Mubarak.
9: Khaila's Bread और Khaila's Bridal की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक Khaila's Bread in Signature Mall and Khaila's Bridal on Leeds Road, Bradford. क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 8877
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाई
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
10: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
11: बालियां अंगूठियां और हार
10: जो दुल्हन करे सिंगार
11: आज ही मामू काके की दुकान
10: खालिस सोने की पहचान
11: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
11: आपकी शान
10: हमारी आन
11: क्वालिटी की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुपट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स
12: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
13: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
12: सोफी ज्वेलर्स
13: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
12: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
14: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
15: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनिंगम स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
10: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मेनिंगम सुपर स्टोर मेनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD88AX फाउंड ब्रेडफोर्ड 495555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश मेनिंगम सुपर स्टोर
15: मेनिंगम सुपर स्टोर
16: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
16: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
17: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
1: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online
2: Listen on your PC or laptop The best Asian music online.
5: You're listening to
18: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवत लेन, BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा। अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: Mubarak Eid, Mubarak.
9: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR01274488
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाई
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
10: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
11: बालियां अंगूठियां और हार
10: जो दुल्हन करे सिंगार
11: आज ही मामू काके की दुकान
10: खालिस सोने की पहचान
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
11: आपकी शान
10: हमारी आन
11: क्वालिटी की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स
12: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
13: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
12: सोफी ज्वेलर्स
13: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
12: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
10: ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
14: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
15: ओपन 7 days 10 till 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड ब्रैडफोर्ड 9627229622
14: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
16: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
17: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
16: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
17: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
18: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 Wetley Hill ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3489। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड 3।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: Mubarak Eid, Mubarak.
9: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274488777
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाई
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
10: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
11: बालियां अंगूठियां और हार
10: जो दुल्हन करे सिंगार
11: आज ही मामू काके की दुकान
10: खालिस सोने की पहचान
11: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
11: आपकी शान
10: हमारी आन
11: क्वालिटी की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुफर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स
12: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
13: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
12: सोफी ज्वेलर्स
13: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
12: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
14: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
15: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
16: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
17: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
16: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
17: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
18: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: just me.

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 Wetley Hill, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर से
2: फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN।

0: इस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
1: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
0: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
1: 07548419678।
0: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
2: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
3: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
2: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
3: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
6: 1413 AM and online.

0: listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: Mubarak Eid, Mubarak.
9: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड ब्रैडफर्ड क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्रैडफर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाई
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
10: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
11: बालियां अंगूठियां और हार
10: जो दुल्हन करे सिंगार
11: आज ही मामू काके की दुकान
10: खालिस सोने की पहचान
11: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
11: आपकी शान
10: हमारी आन
11: क्वालिटी की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स
12: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
13: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
12: सोफी ज्वेलर्स
13: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
12: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014
11: सोफी ज्वेलर्स
14: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
15: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
14: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
15: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
16: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी। आपकी बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड।

सफ़रनामे भी लिखे, कुछ अफसाने ज़ाहिर है वो उन्होंने लिखे, नॉवेल्स लिखे, लेकिन सबसे ज़्यादा बाद में जो उनका प्रोग्राम एक ज़ाविया बहुत मशहूर हुआ उसकी वजह से बड़ी उनकी वजह शोहरत है। तो उस ज़ाविये में क्या होता था, बाबों की बातें होती थी। तो जो आज का ज़ाविया है अशफाक अहमद साहब का, उसमें भी उसका उन्वान ही बल्कि बड़ा दिलचस्प है। आप से गुजारिश है कि सुनिएगा, बाबों की तलाश, ये आज के ज़ाविये का उन्वान है, बाबों की तलाश। तो गुजारिश आपसे यही है 11 बजे के बाद उसको सुनिएगा तो यकीनन आपको बहुत पते की, बहुत मज़े की, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। साथ ही साथ सबीन कराम, जहन की खिड़कियां हम खोलते हैं, अकवाले ज़री जो होते हैं, जो कहा जाता है जिनको, बड़े बुज़ुर्गों के, दानिश्वरों के, शायरों के, मुफक्किरों के, और बहुत क्या कहते हैं मज़हबी शख्सियात होती हैं उनके, या फिर बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो तो उनका कोई ना कोई ऐसा कॉल, कोई ना कोई ऐसी बात जो उन्होंने बहुत सालों पहले कही लेकिन आज तक वो बात रोज़े रोशन की तरह आया है, इसीलिए उन्हें सुनहरे हरूफ में लिखा जा चुका है, अकवाले ज़री कहा जाता है, कि उनसे इंसान बहुत कुछ सीखता है। इंसान का काम है सीखते रहना। ये जो अक्ल शऊर अल्लाह ताला ने अता किया इंसान को, वो इसी वजह से है, वो गौर व फिक्र करे, तदब्बुर करे, बातों के बारे में सोचे। सिर्फ ये नहीं है कि वो बस, और यही ज़्यादा लंबी बात नहीं करें इस बारे में, इसलिए जो बाबों की तलाश है ना, वो जब आप आज का बाब सुनेंगे, चैप्टर सुनेंगे आज का, तो फिर आपको इन बातों की अहमियत का भी अंदाज़ा होगा और साथ ही साथ बहुत से आपके सवालात के जवाब भी मिल जाएंगे कि ऐसी बातें क्यों की जाती हैं, बार बार क्यों हर शख्स जो है वो इस तरह की बातें करना चाहता है, सुनना चाहता है, और होती रहती हैं और होती रहनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। साथ ही साथ क्या होगा, सामीन कराम अकवाले ज़री भी हो गए, और आज की छोटी सी ख़ास बात के उन्वान से वही अकवाले ज़री हम कॉल कोई दोहराएंगे। बाज़ औक़ात हम मुख्तलिफ़ ममालिक की कहावतें जो होती हैं ना, वो भी आपके गोश गुजार करते हैं, तो आज भी कोशिश करेंगे किसी न किसी मुल्क की कोई ख़ास कहावत उनकी जो होती है, जो उनके मुहावरे होते हैं अपने माशरे के लोगों के हिसाब किताब से जो बन जाते हैं और ज़बानज़द आम हो जाते हैं, उनके बारे में भी आज बात होगी। तो इसके अलावा कोई और नुक्ता जहन में आ गया तो हम उसके बारे में भी यकीनन आपसे बात करेंगे। तो ये सब बातें होंगी सामीन कराम। शर्त क्या है? शर्त यह है कि आप हमारा साथ देंगे। साथ किस तरह से आप दे सकते हैं? जी हाँ, स्टूडियोज़ का नंबर है 01274306677। आसान सा, बहुत अच्छा सा नंबर है, 01274 कोड है ब्रेडफोर्ड का, और आपको नंबर आगे क्या मिलाना है, 306677। बस ये सिंपल सा नंबर है, इस नंबर के ज़रिए आप हमें कॉल कर सकते हैं स्टूडियोज़ के नंबर पे, और अपनी डेडिकेशंस पहुंचा सकते हैं, कोई फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं आप वो भी हम तक पहुंचा सकते हैं, इसके अलावा प्रोग्राम के बारे में अपनी आरा, अपनी तजावीज़ हम तक पहुंचाना चाहें तो भी स्टूडियोज़ का यही नंबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी हाँ सामीन कराम, आज का जो इंतखाब है हमने आपको उसकी प्रोग्राम की तरतीब व तफसील से तो आगाह कर दिया, अब चलते हैं। सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, ज़ाहिर है बनता है, अभी ईद गुजरे तो खैर 2-3 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन ये एक त्यौहार ऐसा है कि इसका खुमार कह लीजिए, इसका असर कह लीजिए, इसकी बाकियात कह लीजिए, कुछ भी नाम दे लीजिए, वो दिलों पे, रूह पे, मुआशरे में नज़र आती रहती हैं बहुत देर तक, तकरीबन कम से कम एक हफ़्ता तो लग ही जाता है कि पहले ईद की तैयारियां होती हैं, उसके बाद ईद हकीकी तौर पर आ जाती है, मनाई जाती है। और वैसे भी ये जो ईद है, ईद उल अज़हा, इसे कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है उर्फ़ आम में, तो इसके 3 दिन तो वैसे ही होते हैं। तो ईद थी बुध के रोज़, फिर जुमेरात, फिर जुमा, तो 2-3 दिन गुजरे हैं, लेकिन खुमार अभी बाकी है, अभी लोग गोश्त खा रहे हैं, उनके फ्रिज फ्रीज़र वगैरह जो हैं कुछ ना कुछ भरे होंगे, दावतें चल रही होंगी, अभी तक छुट्टियां भी कुछ थी बच्चों को भी, तो ईद का मज़ा दोबाला हो गया बच्चों वालों के लिए, इसलिए हम आपको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो अब हुआ ईद के बाद, तो लीजिए पहले आप मुबारकबाद कबूल कीजिए, बाकी बातें होती हैं इसके बाद।

जी सामिन कराम, सबको ईद मुबारक हमारी जानिब से, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की टीम की जानिब से। बात हो चुकी ईद के बारे में बहुत सी, और हमने सबको सलाम दुआ भी पेश कर दी, ईद मुबारक भी कह दिया सबको, जो कि जाहिर है बहुत ज़रूरी होता है। लोगों की खुशियों में जो शरीक होते हैं ना, वही लोग अच्छे लोग होते हैं, और उन्हीं लोगों को खुशियाँ वापस लौट के मिलती हैं। कहते हैं ना कि आप जिसको जो चीज़ देते हैं, आप इज़्ज़त देते हैं, आपको इज़्ज़त मिलती है। आप मोहब्बत देते हैं, आपको अमूमन मोहब्बत मिलती है। आप खलूस के साथ किसी से बात करते हैं, आपको वापस खलूस मिलता है, क्योंकि इंसान इस तरह की शख्सियत है कि उसकी फितरत में अच्छाई है। ये और बात है कि बाद में मुआशरे के लोग, बाद में दूसरे लोग जो हैं वो कुछ इस तरह से कर दें कि जी मतलब इंसान बुरा बन जाता है, वरना अमूमन क्या होता है कि जिस तरह का आप बिहेवियर दूसरों को देते हैं, आपको वही चीज़ वैसे ही मिलके वापस आती है। इसीलिए कहा जाता है ना कि धोखा जो होता है वो पलट के वापस ज़रूर आता है। किसी को अगर आपने चीट किया, आपने धोखा दिया, गलत बयानी की, जो कुछ भी है, वो भी वापस, वो जिसे कर्मा कहा जाता है ना उर्फ आम में, तो ये वही बात है। आप जो कुछ किसी को देंगे, इज्जत मोहब्बत प्यार खलूस की दौलत देंगे, आपको वो मिलेगी। आप चालाकी के साथ पेश आएंगे, आप मक्कारी करेंगे, आप की नीयत साफ़ नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, तो जाहिर है जब नीयत ही ठीक नहीं है तो आपके साथ अच्छा हो कैसे सकता है। ये लोग वैसे ही शिकवा करते रहते हैं ना कि जी हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, लोग ये कर देते हैं वो कर देते हैं, हमने तो कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ऐसा होता नहीं है, वरना हाँ आजमाइशें आ जाना वो और बात है। अल्लाह की तरफ से कोई, आपके गॉड आप पे, भगवान की तरफ से कोई आजमाइश आ गई, वो आपको आजमाना चाहता है कि मेरे बंदे पे अगर मुश्किल आए, परेशानी आए, तकलीफ़ आए, बीमारी आए, तब वो क्या करता है? आया मेरा फिर भी शुक्रगुजार रहता है, आया फिर भी लोगों के साथ अच्छे से सलूक करता है, बर्ताव करता है, या फिर वो अपना गुस्सा या अपनी नफ़रत या अपना ग्रह जो है वो मेरे ही जो दूसरे पैदा किए हुए बंदे हैं, इंसान हैं, उन पे निकालता है। तो ये चीज़ें आपस में बहुत इंटरलिंक होती हैं, अगर कभी आप गौर करें तो, अगर कभी आप सोचें तो। जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, जो बाबों की तलाश आज चैप्टर है 11 बजे के बाद हम पेश करेंगे, तो उसको आप सुनिएगा, उसमें बहुत सी पते की बातें हैं, बहुत सी अच्छी बातें हैं, हमेशा ही होती हैं अशफाक अहमद की लिखी हुई बातें। लेकिन ये जो लोग पूछते रहते हैं ना, बाबा कौन है या बाबी कौन है, या तलाश करते हैं कोई रूहानी शख्सियत मिल जाए जिससे हम दुआ करवा लें, जिससे हम बात कर लें, जिसके साथ अपना हम दुख दर्द शेयर कर लें, जिसे कहते हैं अपनी कैफियत बयान कर दें, तो उन्हीं के बारे में ये बात है आज की। तो आप ज़रूर प्रोग्राम को आखिर तक आज गुजारिश है कि सुनते रहिएगा। अब सबसे पहले प्रोग्राम में हमेशा की तरह, जी हाँ अमूमन हमेशा ही होता है, तो समीरा साहिबा आप शामिल हुई प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी नवाजिश, प्रोग्राम को सुन रही हैं, आपकी प्यारी मीठी सी आवाज़ जब आती है प्रोग्राम में, ये हकीकत है, ये हम दिल से कह रहे हैं, वाकई प्रोग्राम को चार चांद लग जाते हैं। तो खुश रहिए, शादो आबाद रहिए, बहुत सी दुआएँ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, सब खैर खैरियत रहे हमेशा। आपने जिस गीत की फरमाइश की है, इस गीत के बाद आपका गीत आ रहा है समीरा साहिबा, तो तैयार रहिएगा, मिस मत कीजिएगा। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी आपके फेवरेट सिंगर हैं, और जो गीत आपने कहा हमने वही गीत क्यों किया है। आज वैसे भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े से मुख्तलिफ गीत पेश किए जाएं, ज़रा पुराने गीत पेश किए जाएं, अमूमन हम दूसरे गीत पेश करते हैं, होती हमारी ही पसंद है जाहिर है ज़्यादातर। हाँ, आपकी कोई फरमाइश आ जाए तो वो और बात है। तो जैसा कि समीरा साहिबा आपने प्रोग्राम में फ़ोन किया और फरमाइश की, तो आपकी फरमाइश हम तकरीबन बस कुछ ही देर में हम पूरी करेंगे। आप साथ साथ रहिएगा हमारे ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के, और दीगर सामीन से भी गुजारिश है कि अगर आप भी कोई गीत सुनना चाहें तो फिर आप स्टूडियोज़ का नंबर डायल कर सकते हैं 01274306677। आपसे मुखातिब है आपकी मेज़बान उस्मा अशफाक, प्रोग्राम इंतखाब के हमरा। तो अब क्या जी, कौन सा गीत सुनाएं आपको? नहीं, हम ऐसा करते हैं कि समीरा साहिबा को इंतज़ार नहीं करवाते, उनका गीत जब हमने क्यू कर ही लिया है तो फिर फौरन उनके लिए हम पेश करते हैं, ज़्यादा इंतज़ार करवाना अच्छी बात नहीं होती। तो लीजिए समीरा साहिबा, आपने हमारा दिल खुश किया, फ़ोन किया, प्रोग्राम में शामिल हुई, चार चांद लगाए प्रोग्राम को, तो अब आपको हम खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो आप अपनी पसंद का खूबसूरत सा ये गीत सुनिए।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak.
9: Bradford Asian Radio के सभी सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से दिली ईद मुबारक
8: मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
13: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
14: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
13: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
14: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274 477257 दुबई ज्वेलर्स
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
13: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड 3

ढेरों बढ़ जाता है और फिर दिल चाहता है कि मज़ीद खूबसूरत सा आपके लिए हम प्रोग्राम पेश करें। और बस अल्लाह ताला का फ़ज़ल, उसका करम है, आप जैसे खूबसूरत लोग जो हैं, आप जैसी खूबसूरत शख्सियात जब प्रोग्राम में आती हैं तो हकीकत है कि प्रोग्राम जो है उसकी तौकीद में, उसकी इज़्ज़त में। जैसा कि हमारे एक साथी प्रेजेंटर हैं जनाब रफ़त अब्बास साहब हमेशा कहा करते हैं,

जी हाँ सामईन कराम, आप भी भूल जाइए, जो कुछ हो जाता है बाज़ औक़ात, लेकिन इससे किसी न किसी वजह से होता है, तो होता रहता है, चलता रहता है। तो बात क्या हो रही थी कि क्या बात हो रही थी, हम भूल गए जी। आप जैसी खूबसूरत शख्सियत की बात हो रही थी कि जब आप लोग प्रोग्राम में शामिल होते हैं, समीरा साहिबा, नाहिद साहिबा, अज़रा साहिबा है हमारी एक कॉलर, रेहाना साहिबा हैं, रुखसाना साहिबा हैं, जरका साहिबा हैं, और कौन है, क्या नाम है जिनका, क्या नाम रहे, क्या जो भी हैं हमारी, जितने भी कॉलर्स हमें फ़ोन करते हैं, उन सब का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके लिए हम आते हैं, और जब आप लोग फरमाइश करते हैं तो हमें भी लगता है कि चले कुछ अच्छा काम हो गया, किसी को कुछ सुन रहा है, हमें पसंद कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात होती है ये अल्लाह का फजल है, करम होता है। तो रेहाना साहिबा, आपका गीत हमने क्यों कर रखा है, खूबसूरत सा गीत लगाएंगे, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। और जरका साहिबा, आपने कहा था कि सियाना साहिबा के लिए, जो आपकी बहू हैं, माशाल्लाह से अल्लाह उन्हें खुश रखे, आपके साथ रखे, उनके लिए भी गीत आएगा, हमने वो भी क्यों कर रखा है, बस ये बाबों की तलाश हो जाए थोड़ी सी अशफाक अहमद साहब के साथ, तो फिर हम आपके लिए, सियाना साहिबा के लिए और रेहाना साहिबा आपके लिए और रुखसाना साहिबा आपके लिए भी खूबसूरत सा गीत पेश करते हैं। नाहिद साहिबा, दोबारा से बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई, ज़्यादा लंबी बात नहीं हो पाई इसलिए कि हमें ऑन एयर जाना था, तो जब गीत लगा हो तो बात लंबी हो जाती है, लेकिन ब्रेक जब ख़त्म होने को हो तो फिर तो जाहिर है हमारी मजबूरी होती है, इसलिए आपसे बहुत माजरत। बहरहाल इस हिस्से को ज़रूर सामीने कराम सुनिएगा, और इसके बाद गीत आपके ज़रूर आएंगे, आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी की जाएगी। तो अशफाक अहमद साहब क्या लिखते हैं बाबे की तलाश में, मज़े की बात है, लिखते हैं कि बड़े बरसों के बाद, कुछ रोज़ पहले की बात है कि मैं सिनेमा देखने गया, लोग मुझसे इस प्रोग्राम की मुनासबत से किसी बाबे का पता पूछते हैं कि हम रूहानियत की मनाजिल तलाश कर सकें, या कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम बातिन का पता कर सकें और इस मंजिल पर पहुँचें जहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कहा गया है। और मैं उनसे अक्सर यही अर्ज़ किया करता हूँ कि बाबों की दुनिया ऐसे नहीं है कि जिस तरह वो किसी माहिर डॉक्टर का पता हो और आप आराम से किसी माहिर तबीब या स्पेशलिस्ट का पता और फ़ोन नंबर हासिल कर लें, या आपका नामी गिरामी वकील जो कभी हारता ही ना हो उसके चैम्बर का पता, फ़ोन या फैक्स नंबर ले लें, बल्कि ये बाबे तो आपके अंदर ही से पैदा होते हैं। जब आप तहैया कर लेते हैं और फैसला करते हैं, बिल्कुल ऐसा फैसला जिस तरह आप और आपके घर वाले करते हैं कि जी आपने BA करना है, तो चूंकि उसे करने के लिए 14 बरस का अरसा दरकार होता है, इस तरह बातिन के सफ़र के लिए भी आपको अपनी ज़ात के लिए वैसा ही फैसला करना होता है। देखिए, इंसान जो है वो दूसरे जानदारों के मुकाबले में एक मुख्तलिफ जानदार है, उसमें कोई शक नहीं कि दीगर जानदारों में भी जान होती है, इंसान में भी, वो हरकत भी करते हैं, बोलते फिरते हैं, चलते हैं, लेकिन इन दोनों में एक बड़ा वाज़ फ़र्क है, इंसान में रूह होती है और जानवर में नहीं होती। मिसाल के तौर पर 4 बकरे खड़े हैं, उनमें से एक को ज़बह कर दें, उनकी खाल उतारें और बाकी 3 को चारा डाल दें, तो वो बड़े शौक से चारा खाने लग जाएंगे, उनकी तवज्जो नहीं होगी कि उनका साथी तख्तादार पर चढ़ चुका है, उन्हें कोई मलाल या दुख नहीं होगा। अब दूसरी तरफ एक इंसान को कत्ल करके आप फेंक देते हैं कि अगर वो खुदा ना खास्ता कत्ल किए जाने के बाद कहीं पड़ा हो और आप वहाँ लोगों से कहें कि आप सुकून से बैठकर खाना खाएं या खुश रहें, तो ऐसा मुमकिन नहीं। मैं जहाँ तक जान सका हूँ वो है कि रूह और जान में यही एक फ़र्क है। जान हर जानदार का एक छोटे लेवल पर साथ देती है, लेकिन जो रूह अता की गई है वो सिर्फ इंसान को दी गई है। हर इंसान के अंदर एक ऐसी चिप लगा दी गई है और पहले से प्रोग्रामिंग कर दी गई है, जिस तरह आपने अपने जिस्म और अपनी जान को परवरिश की आंख से देखना है, बिल्कुल इसी तरह आपने अपनी रूह को भी इन बुलंदियों पर ले जाना है

0: جن سے یہ اتر کے آپ کے وجود کے ساتھ پیوست ہو جائے۔ بڑے حسن اتفاق ہے سامعین کرام، آج ہم نے صبح پہلے ہی پروگرام میں چپ کی بات کی تھی، اور دیکھیے اشفاق احمد صاحب بھی بات اسی کی کر رہے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ چپ لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ یہ پوچھتے رہیں گے کہ جناب مجھے بتائیے کہ ہم یہ کیسے کریں، تو آپ کی یہ بات محض کتابی اقتصابی ہوگی۔ آپ ایک تجسس کے طور پر ہی پوچھیں گے کہ ایسا کیسے ہوتا ہے۔ فرض کریں اگر آپ کو بتا بھی دیا جائے کہ فلاں صاحب بڑی روحانی منازل طے کر چکے ہیں، ان کے پاس سمجھانے بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، اور اس کے بعد آپ ارادہ اور تہیا بھی کریں کہ ان سے کچھ حاصل کریں، تو آپ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ آپ کی ایک آنکھ اور سارا وجود اور اس کے ساتھ آپ کا نصف دماغ اس بات پر متعین ہو جائے گا کہ میں ان صاحب کی کوئی ایسی چوری پکڑوں جس پر میں تنقید کر سکوں اور لوگوں کو بتا سکوں کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ عام طور جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا، عام طور پر اور خاص طور پر ایسی ہی نگاہ رکھتے ہیں کہ ہم اس بات پر زیادہ نظر رکھتے ہیں کہ آدمی سے بابے نے ہاتھ ملایا اور اس آدمی نے ہاتھ ملاتے ہوئے بابے کو 5 روپے کا ایک نوٹ دیا اور انہوں نے اسے لپیٹ کر جیب میں ڈال لیا۔ یہاں آ کر آپ کی سوچنے، سمجھنے اور اختیار کرنے کی ساری صلاحیتیں مسدود ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب آپ نے اس شخص کی چوری پکڑ لی اور اس آدمی کو اپنے اندر اپنے دل میں بدتر خیال کیا۔ جانور کی نسبت ایک آدمی 40 افراد یا 500 آدمیوں کو کھانے کی دعوت پر بلا سکتا ہے، کھانا کھلا سکتا ہے اور خود الگ سے کھڑا ہو سکتا ہے کہ میرا روزہ ہے، میں تو نہیں کھاؤں گا۔ اگر وہ روزے سے نہ بھی ہو تو بھی اگر ضروری خیال کرے یا کھا پی لے، اگر نہ چاہے تو کھائے۔ اس کی اینیمل ڈرائیو جو ہے وہ اس کی انسٹنکٹیو ڈرائیو ہے اور وہ اس پر کنٹرول کرتا ہے، یہ اس کی روح ہے جو اسے کنٹرول کی طاقت اور بلندی عطا کرتی ہے۔ اس کے لیے اگر آپ مجھ سے بار بار یہ اصرار کریں کہ آپ کو وہ راستہ بتایا جائے جس کی معرفت ایسے آدمی سے آپ ملاقات کر سکیں جو آپ کی روح کی سربلندی میں آپ کی مدد کرے، تو اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس کے لیے آپ کو آنکھ کھول کر رکھنی ہوگی، منہ بند کر کے رکھنا ہوگا۔ ایک مرتبہ سمندر کے اندر ایک چھوٹی مچھلی نے بڑی مچھلی کو روک کر کہا کہ آپا مجھے بتاؤ کہ سمندر کہاں ہے، میں بڑی پریشان پھرتی ہوں لیکن سمندر نہیں ملتا، میں نے اس کا لفظ سن رکھا ہے۔ اس پر بڑی مچھلی نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ جہاں ہم دونوں کھڑی ہیں یہ سمندر ہی تو ہے۔ چھوٹی مچھلی بولی، واہ آپا آپ نے بھی وہی بات کہی جو سارے لوگ کرتے ہیں، یہ تو پانی ہے، سمندر نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ کر وہاں سے چل پڑی۔ بڑی مچھلی آوازیں دیتی رہی کہ رک جاؤ، میری پوری بات سن لو، اور یہ بات تمہاری سننی ضروری ہے تمہارے لیے، اگر تم سمندر کی کھوج میں نکلو گی تو تمہیں سمندر نہیں ملے گا، لیکن اگر آنکھیں اور اپنے کان کھول کر مشاہدہ کرو گی تو پھر تمہیں وہ سمندر ضرور نظر آئے گا جس کی تمہیں تلاش ہے۔ لیکن بڑی مچھلی کی بات ختم ہونے سے قبل چھوٹی مچھلی بڑی دور جا چکی تھی اور اس نے میری طرح سے اپنی بڑی آبا کی بات نہیں سنی۔ 32 سال کے بعد، بلکہ اس سے بھی زیادہ سالوں کے بعد، میں ایک بار پھر چند روز قبل سنیما دیکھنے گیا۔ کڑی دھوپ تھی لیکن جب میں سنیما کے اندر داخل ہوا تو مجھے اندر اندھیرا نظر آیا، جیسا باہر سے اچانک اندر جائیں تو آنکھیں چندھیائی ہوتی ہیں۔ ہال میں میری سیٹ قریب ہی تھی، میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اسکرین چلنے سے قبل ایک اور صاحب ڈائس پر آئے جنہوں نے روشنی کے ایک حالے کے اندر اس فلم کا تعارف کروایا۔ اب اس کے بعد ان صاحب کو روشنی کے حالے میں دیکھ کر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اگر، غور سے سنیے گا سامعین، اگر کوئی شخص کسی طرح کسی روشنی کے حالے میں آ جائے تو وہ خود بخود اجاگر ہونے لگتا ہے۔ اس کو یہ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ دیکھو اس وقت میں اپنا آپ ظاہر کر رہا ہوں۔ فلم شروع ہوئی، ہال میں بالکل اندھیرا چھا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہال کا دروازہ کھلا اور ایک اور تماشائی اندر داخل ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ مجھے نظر تو نہیں آیا چونکہ دروازہ بند ہو گیا تھا۔ جب دروازہ کھلا تھا تو اندر آنے والے شخص کا وجود مجھے نظر آیا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ آدمی تو کسی صورت میں بھی اپنی سیٹ تک نہیں پہنچ سکتا، اندھیرا تھا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں ایک ٹارچ جلی اور اس ٹارچ نے اس شخص کے پاؤں کے اوپر ایک چھوٹا سا ہالہ بنایا اور اس ہالے کی مدد سے وہ شخص چلتا گیا۔ ٹارچ والا اس کے پیچھے پیچھے آتا گیا اور جہاں اس شخص کی سیٹ تھی اس کو بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد میں نے پھر فلم تو کم دیکھی، یہی سوچتا رہا کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں ایسا ہالہ آ جائے اور کوئی گائیڈ کرنے والا اسے میسر ہو تو پھر وہ شخص یقیناً اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے، سینما کا رخ کرنا پڑتا ہے، فلم کے لگنے کے اوقات کا علم ہونا چاہیے، دروازہ کھلنا چاہیے، फिर टॉर्च वाला खुद ब खुद आकर मदद करता है और आपको मदद के लिए किसी को पुकारने या आवाज़ देने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। आप जब आवाज़ें देते हैं, पुकारते हैं, चीखते हैं, दुनियादारी के मामलात के अंदर रहते हुए आहोबका करते हैं, तो फिर वो टॉर्च वाला नहीं आता। इस तरह आप बस पत्ते इकट्ठे करते रहते हैं और टेलीफोन नंबर जमा करते हैं, लेकिन वो बात जो बड़ी मछली ने छोटी मछली से कही थी कि आंखें खोल के रखो और मुशाहिद बनकर रहो, यानी देखते रहो, ऑब्जर्व करती रहो कि तुम पर सारे भेद आश्कार हों, रोशन हों। इस मादी ज़िंदगी में जिसमें बार बार आपके दोस्त अहबाब अजीज़ो अकारब मादा परस्ती की बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में लोग बहुत मादा परस्त हो गए हैं, लोगों में पहली सी मोहब्बत प्यार जगानगत नहीं रही, तो ये खेल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं चला बल्कि सारी की सारी दुनिया इस वक्त मादा परस्ती के चक्कर में है। मैं समझता हूँ ये बुरी बात नहीं है। मैं एक ऐसे इलाके में रहा हूँ और ऐसी जगह जन्मा पला हूँ जहाँ सांप बहुत होते थे और कलर के सांप अकसर पाए जाते थे। हम बचपन में जंगल में जाकर या वीरान और गिरे पड़े घरों में सांपों की केचनियाँ इकट्ठी करते थे। क्या आपको सांपों की केचनियों का पता है? सांप एक वक्त पर सो जाता है, उसके जिस्म के ऊपर एक प्लास्टिक के शॉपर बैग की तरह की बारीक खाल या केंचली चढ़ जाती है और इस केंचली पर उस सांप के से नक्शोनिगार मुंतकिल हो जाते हैं और सांप एक ख़ास अरसे के लिए उस केंचली के अंदर रहकर हाइबरनेट करता है। तब ना वो सांस लेता है, ना खाना खाता है, बिल्कुल मुर्दा या सुदबुद होके पड़ा रहता है। मैं इस इकोनॉमिक वर्ल्ड को जब भी इस केंचली में देखता हूँ तो गौर करता हूँ कि हम सांप हैं जो इकोनॉमिक्स या पैसे की दौड़ के अंदर अपने बदन पर केंचली चढ़ा के खामोश पड़े हैं। हम बेहिसो हरकत हैं और हमारा कोई बस नहीं चलता। हमें कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनियां जिस तरह चाहती हैं इस्तेमाल करती हैं। आप इससे खौफज़दा हैं, लेकिन खौफज़दा ना हो, ज़्यादा देर तक ये बात नहीं चल सकेगी क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है जब सांप को अपनी ग्रोथ के लिए इस केंचली के अंदर से निकलना पड़ता है और वो कमाल से और बड़ी अजीबोगरीब हरकतों सकनात करके अपने बदन को पुरानी टूटी दीवारों से रगड़ रगड़ कर घिसा कर वो उस केंचली से बाहर निकलता है और अपनी उस केंचली को पीछे छोड़ देता है। फिर जब वो बाहर निकलता है तो वो ज़िंदगी में और ज़िंदगी के दूसरे जानवरों के साथ शामिल होता है। सांप जिस तरह अपनी नशोनुमा के लिए एक ख़ास वक्त पर इस खौल से निकलता है और बाहर आकर ज़िंदगी में शामिल होता है और नए अंदाज और ढंग और नए सिरे से सांस लेता है, इसी तरह इंसानों की ये सारी बस्तियाँ जो मजमूई तौर पर इस वक्त अपनी इकोनॉमिक सी केंचली के अंदर लिपटी पड़ी हैं, इनको अपनी ग्रोथ के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा और ये निकल के रहेंगी क्योंकि ये माशरा, ये दुनिया, ये खुदाई और जितना इस काम के लिए नहीं बनी जिसमें इसको दाखिल कर दिया गया है या एक मखसूस केंचली चढ़ा दी गई है, ये बस्तियाँ अपनी रूहानी नशोनुमा के लिए बनी हैं और इन बस्तियों के बासियों को अपनी रूहानियत का मुजाहरा करना है और अपने बातिन के सफ़र आगे निकलना है। बातिन के इस सफ़र में, यानी अंदर का जो सफ़र होता है रूहानी, आप शोर वोगा करके किसी को टेलीफोन करके या मैसेज भेजकर या अपने कंप्यूटर के ज़रिए किसी को होशियार करके ना कोई पैगाम दे सकते हैं ना ले सकते हैं। ये खामोशी की एक दुनिया है, इसमें अगर आप कभी दाखिल हो सकते हैं तो फिर ही आप इसका मज़ा ले सकते हैं। मत पूछें कि हमें किसी बाबे का पता बताएं, आप खुद बाबा हैं। जब आपको दीवार से ढो लगाकर आराम से बैठना आ गया और दुनिया के सबसे बड़ी इबादत यानी आप खामोशी में दाखिल हो गए तो आपके ऊपर अनवारो बरकात की बारिश होने लगेगी और अनवाओ इकसाम किस्म का रिस्क आपका मुकद्दर बनता चला जाएगा। जब मैं इटली से लौटा तो मैं बहरी जहाज़ के ज़रिए वतन आया। मेरा आबी जहाज़ पर पहला सफ़र का तजुर्बा था। जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता नहाय सुस्त रवि से गहरे पानियों में जा रहा था। ईशा के वक्त तक शहर हमारी नज़रों से ओझल हो गया। फिर हम खाने की मेज़ पर बैठ गए और बाद में आकर अपने अपने कैबिन में लेट गए। मालूम नहीं जहाज़ किस रुख जा रहा है, इसे कौन चला रहा है, ये कैसे चल रहा है। समीने करम, ये बड़ी अहम बातें हैं, गौर से सुनिएगा, बहुत सादा लगती हैं लेकिन सोचने की बातें हैं। तो आगे लिखते हैं अशफाक अहमद, सुबह उठे तो मुझे इल्म नहीं था कि जहाज़ किस रुख जा रहा है, कौन चला रहा है और ये कैसे चल रहा है। हम जब नाश्ता ही कर रहे थे तो स्पीकर पर एक आवाज़ गूंजी। वो नहायत मीठी इटालियन अंदाज में अंग्रेज़ी बोलने की आवाज़ थी, जो कह रही थी कि मैं कप्तान बोल रहा हूँ एंड आई वांट टू से समथिंग टू यू एंड गिव सम इंस्ट्रक्शंस, सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। हम सब ने सुनकर अपना खाना वहीं छोड़ दिया और कप्तान की आवाज़ आती रही। वो हमें बताता रहा कि हमें क्या करना है, किस तरह से ये 11 दिन का सफ़र उसके साथ गुजारना है। ना हमें कप्तान कभी नज़र आया, ना उसका तारुफ हुआ, ना मुलाकात हुई और ना ही उससे मिलने के मौके मैसर आए। सिर्फ एक आवाज़ थी जो आती थी और हमें ज़िंदगी के एक नए मरहले में दाखिल करके चली जाती थी। मैंने उस वक्त जब बहुत तूफ़ानी समंदर से जहाज़ गुजर रहा था तो सोचा कि एक और भी कश्ती है जिसको हम दुनिया कह सकते हैं। इस कश्ती का एक निगहबान और कप्तान भी है जिसकी आवाज़ हम तक पहुंचती रहती है, जो हमें हिदायत देता रहता है और अहकाम सादर करता रहता है। वो हमें दिखाई नहीं देता, हमें मिलता नहीं है और ना ही मिलने की उम्मीद होती है, फिर भी हम उसके हुक्म के मुताबिक चलते रहते हैं और जो उसके अहकाम मानने वाले होते हैं उन्हें किसी बाबे या किसी और की इंस्ट्रक्शंस देने वाले की ज़रूरत महसूस नहीं होती। ये खामोशी और तन्हाई का सफ़र है। जो कभी भी इस साइलेंस के सफ़र को इख्तियार करता है उसको बंद अंधेरे कमरे में एक दरवाज़ा ज़रूर नज़र आता है जिसमें वो रूहानी तौर पर दाखिल हो सकता है। आपके पास और हमारे पास रूह का वो जलवा मौजूद है और वो चिप जिसका मैंने पहले जिक्र किया किसी और के इग्निट करने से नहीं चलेगा और आप ही की कोशिश और जिद्दोजहद से चलेगा, लेकिन ये कोशिश और स्ट्रगल उससे मुख्तलिफ है जो आप इकोनॉमिक वर्ल्ड में करते हैं, जो आप कंपटीशन में करते हैं और जिस तरह से हमें हुक्म है, जिस तरह इस्लाम ने रुख मुकर्रर किया कि आपने इस तरफ खड़े होना है और खुदा ने तो फरमाया है कि मैं हर जगह मौजूद हूँ, लेकिन मैं हुक्म दिया कि तुम खाना गाबा की तरफ मुँह करके सारी कोशिश शुरू करो। तो हमने सबसे पहले रुख को मुतय्यन करना है, ठीक है, कि आपने किस रुख खड़े होना है। अगर आप रूहानियत की दुनिया में दाखिल होने के आरजूमंद हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ज़ात को ये समझाना पड़ेगा कि हम एक रुख लेकर उस तरफ बढ़ें। पिछले दिनों एक जुग्राफी के रिसाले में मैंने एक मज़मून देखा, उसमें लिखा था कि बहुत देर पहले लोगों ने एक छोटे से जज़ीरे पर एक खूबसूरत इबादतगाह बनाई और इसमें दुनिया की हर किस्म की धात की घंटियाँ लगाईं और वो घंटियाँ हवा के चलने से बचती थीं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो जज़ीरा आहिस्ता आहिस्ता ज़ेरे आब आ गया, यानी समंदर के नीचे चला गया और वो मंदिर या इबादतगाह पानी की आगोश में आकर ख़त्म हो गई। कुछ पुराने लोग बताते हैं कि अभी भी वहाँ पानी के अंदर से घंटियों की आवाज़ें आती हैं और जो सुनने वाले कान रखते हैं उन्हें वो आवाज़ अब भी सुबह शाम आती है। लेकिन इन सुनने वालों का कहना है कि आपको घंटियों की आवाज़ सुनने के लिए समंदर की आवाज़ से हम आहंग होना पड़ेगा। इस तरह खुदा से बात करने, उसको सुनने के लिए उसकी मखलूक के दर्शन करना होंगे। जो लोग मखलूक खुदा के मतलब गौर करते हैं उसके हो जाते हैं और मखलूक खुदा की खिदमत का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, या वो लोगों से कीड़े निकालने जब बंद कर देते हैं, उनको किसी बाबे, किसी रहनुमा या किसी हादी की ज़रूरत नहीं होती। वो डायरेक्ट उस आवाज़ में पहुंच जाते हैं जो समंदर के नीचे छुपे हुए इबादत कदे को हर वक्त नमोदार होता देखते रहते हैं। खुदा आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाए। समीन कराम, यह था अशफाक अहमद साहब का जाविया। और जैसा कि हमने आपसे कहा था ना कि बहुत अहम, बड़ी पते की बातें हैं। आपको बाबे की तलाश है, आप अपने अंदर बाबा तलाश कीजिए। हकीकत है, ये बात सही है। हर शख्स अपनी ज़ात में एक बाबा है। हमने प्रोग्राम के आगाज़ में, आप अगर आपने शुरू से प्रोग्राम सुना हो, तो बात की थी कि हर शख्स को अल्लाह ने बड़ा यूनिक बनाया। जो हमारे अंदर खूबी है, सलाहियत है, अच्छी चीज़ है, वो दूसरे में नहीं। जो दूसरों में बहुत सी खूबियाँ हैं, सलाहियतें, काबिलियत है, वो हम में नहीं है। हर शख्स अपने हिसाब से बड़ा खूबसूरत। ये हमारी एक दोस्त है, वो ये कहा करती हैं, उन्हीं की बातों कोट करते हैं कि हर शख्स को दुनिया में अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बना के भेजा और वो तो खुद खुदा ने कह दिया कि वो जमील है, वो हसीन है और वो हुस्न को पसंद करता है। तो कैसे हो सकता है अपनी मखलूक को वो बुरा बनाए? तो कोई बुरा नहीं होता, बदसूरत नहीं होता, बदनुमा नहीं होता। हमें नज़र आता है, हमारी अपनी देखने में फ़र्क है, हमारा सोचने, हमारे समझने में फ़र्क आ जाता है। हम रूह को नहीं देखते, हम सिर्फ बदन को देखते हैं। फलां का बाजू नहीं, फलां का रंग ऐसा है, फलां चलता ऐसा है, फलां की, हम खामियां तलाश करने में बड़े तेज़ हैं। हमारी अच्छाइयों पे तो नज़र जाती ही नहीं ना, इसीलिए कि हम तो सतह पे रहते हैं। जैसे वो बात की बड़ी मछली छोटी मछली को समझाने की कि भाई समंदर क्या है, उसका मुशाहिदा करो, उसके बारे में गौर व फिक्र करो, सोचो तो तुम्हें पता चलेगा समंदर है। लेकिन हम तो यही समझते रहते हैं कि पानी है, समंदर कहाँ है? तो फिर हमें सिर्फ पानी नज़र आएगा। हमें समंदर के अंदर जो इतनी बड़ी एक अलहदा से कायनात है, एक दुनिया बनाई अल्लाह ने, वो नज़र नहीं आएगी। उसके अंदर जो मखलूकात है नज़र नहीं आएंगी, उनके बारे में हम सोचेंगे नहीं। सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में जब सोचेंगे तो फिर हमारी ज़ात बहुत महदूद हो जाती है, हमारी सोच बहुत महदूद हो जाती है, दुनिया बहुत छोटी हो जाती है। तो फिर कैसे हम किसी दूसरे को देख सकते हैं? हमें नज़र ही कोई नहीं आता अपने आगे। अल्लाह ने एक निज़ाम कुदरत रखा है, वो ऊपर बैठा है। जैसे अशफाक अहमद साहब ने कहा, इंस्ट्रक्शंस उसने दे दी, रहती दुनिया तक दे दी, हमारा काम है कान लगाकर उनको सुनना, उन पर अमल करना। और जब हम देखिए बात इंटरलिंक है, जब आप सुनेंगे ना, इसका मतलब है कि आपका अपने मालिक अपने खालिक से ताल्लुक है, आपका कनेक्शन उसके साथ जुड़ा हुआ है। यही कनेक्शन तो चाहिए आपको। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, इस वक्त आप घर में हैं, काम कर रहे हैं, दफ्तर में हैं, कपड़े धो रही हैं ख्वातीन, इस्त्री कर रहे हैं, सफाई हो रही है, बच्चों को देख रहे हैं, प्रोग्राम भी साथ साथ सुन रहे हैं, लेकिन आपको याद है कि ऊपर एक अल्लाह बैठा है, उसको आप याद करते रहें, उसको जहन में रखें, अपने साथ साथ लगा के रखें। ये नहीं है कि हाँ ठीक है पाँच वक्त जब अजान होगी या मंदिर की घंटी बजेगी तो आपने जाना है, या संडे के संडे चर्च आपने जाना है, इबादत कर ली, बहुत हो गया जी, हम तो बड़े नेक पाक बाज लोग हैं। ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ी ये जो इंसान के अंदर गरूर आ जाता है ना, तकब्बुर, कि जी हम बड़ा कुछ हैं, बहुत कुछ हैं, ये है वो है, यहीं से ख़राबी पैदा शुरू हो जाती है। जब आप समझने लगेंगे कि लोग बहुत दुनिया भरी पड़ी है, आपसे अच्छे से अच्छे, अच्छे से अच्छे और अच्छे से अच्छे लोग दुनिया में मौजूद हैं, तो फिर आपको अपना आप बहुत छोटा लगेगा। तब शायद आप अपने आप को भी समझना शुरू कर देंगे और दूसरों को भी। और कहीं खुदा ने नहीं कहा, कोई गॉड नहीं कहता कि आप दुनियादारी छोड़ के और जाके अकेले कोने में टीले पे बैठ जाके बैठ जाएं, जंगल में चले जाएं और चिल्ले काटें। नो, इसका हुक्म नहीं है, कहीं भी नहीं है। दुनिया ही में रह के दुनियादारी को निभाते हुए, लेकिन उसके तरीके पर चलते हुए आपने जब ज़िंदगी गुजारेंगे तो यकीनन आपकी रूह का सफ़र, आपका जो बातिनी सफ़र है ना, वो ऊपर की तरफ जाएगा। आप तरक्की करेंगे, आप अल्लाह को पालेंगे, अपने आप को पालेंगे, दुनिया को ढूंढ लेंगे। देखिए जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ना बड़े बड़े, या दानिश्वर होते हैं, मुफक्किर होते हैं, आलिम दीन जो कहलाते हैं लोग, वो सब के सब गौर व फिक्र करते हैं, सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचते, इसीलिए वो आगे बढ़ जाते हैं, वो हमसे बहुत कदम आगे होते हैं। तो लोगों से मोहब्बत करना सीखिए, लोगों के अच्छी बातों की तरफ देखना शुरू कीजिए, उनकी बुराइयाँ उनकी खामियाँ तलाश करना छोड़ दीजिए। अपनी खामियाँ ज़रूर तलाश करें इंसान, दूसरों की नहीं। तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद हमेशा बराए इस्लाह हो। चलें यहीं से शुरू कर लें बात को, तो शायद आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम आगे चलते चले जाएंगे और हमारे अंदर भी अपना जो बाबा या बाबी जो भी है कह लीजिए, वो दोबारा से हरकत में आ जाएगा, ज़िंदा होना शुरू हो जाएगा। यही अशफाक साहब के कहने का मकसद है कि आप बाहर जितना भी चले जाइए, थेरेपीज कीजिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, इलाज इंसान सबसे पहले अपना खुद कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ने उसको ये तौफीक दे रखी है, बस उससे ताल्लुक जोड़ लीजिए, बाकी होती है बात इसके बाद।
1: Listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online. Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
1: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 1-800-630-6677.
4: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274-491-442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 1-1 Oak Lane, BD94QU, 01274-056-014। सोफी ज्वेलर्स।
5: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
8: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
9: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
8: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
14: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.
0: जी मौजूद सामीन कराम, आपसे समात, आपसे मुखातिब आपकी मेज़बान उस्मा अशफाक, प्रोग्राम इंतखाब के हमरा। और यकीन कीजिए कि बहुत अच्छा आज का जाविया था, आपने भी सुना होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। बातें बहुत सी हो सकती हैं इसके बारे में, इसके हवाले से, लेकिन सिर्फ मुख्तसरन अब यही बात कहेंगे कि अपनी ज़ात को देखिए, अपने आप को पहचानिए, ख़ुद के ऊपर नज़र रखिए। दूसरों पे नज़र रखना जब हम छोड़ देंगे ना, तो फिर हमारे हालात बहुत बहुत बहुत अच्छे हो जाएंगे। और रूहानी सफ़र आप करना चाहते हैं, बातनी तौर पर आप तरक्की करना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम हमारे मुताबिक, हमारी समझ में जो आता है इन बातों को सुन के, पढ़ के, समझ के, यही आता है कि आप अपने बारे में गौर व फिक्र कीजिए, अपनी बुराइयों और खामियों पे नज़र रखिए, दूसरों की अच्छाइयों पे नज़र रखिए। दूसरों को अच्छा समझेंगे, अल्लाह आपसे बहुत खुश होगा, लोग तो खुश हो ही जाएंगे, वो चाहते हैं आपकी तारीफ की जाए, चाहते हैं कि वो उनको अच्छा समझा जाए। हर शख्स की ख्वाहिश होती है तारीफ, किसको बुरी लगती है, ये गलत है कहना कि जी आपको तारीफ सुन के अच्छा नहीं लगता। हाँ, उसका अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह का करम होता है, रहना चाहिए, दुआ हमेशा मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक अपना फ़ज़ल व करम हम सब के ऊपर जारी और सारी रखे, क्योंकि उसके बगैर इंसान कुछ नहीं है। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते इस बारे में। रेहाना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में फ़ोन किया था। ये खूबसूरत सा गीत जो है रेहाना साहिबा, आपके लिए हम पेश कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप इसको बहुत पसंद करेंगी। पुराना आज हमने कोशिश की, ज़रा पुराने गीत थोड़े मेलोडियस, थोड़े स्लो स्लो से लगाए जाएँ, ना जाने क्यों बस ख्याल आ गया। और समीरा साहिबा, आप दोबारा प्रोग्राम में शामिल हुई, बहुत शुक्रिया, बड़ी आपकी नवाजिश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये गीत आपके नाम भी करते हैं, और एक आने वाला गीत है बड़ा खूबसूरत, वो गीत स्पेशली हम आपके लिए दोबारा पेश करेंगे। और याद है हमें सियाना साहिबा के लिए इसके बाद अगला वाला गीत वो होगा, जरका साहिबा आपने फरमाइश की थी उनके लिए, तो सियाना आपके लिए गीत आएगा इस गीत के बाद। होपफुली यू आर स्टिल लिसनिंग, और योर मदर इन लॉ शी इज़ लिसनिंग एज वेल। तो लीजिए इस गीत को सुन लीजिएगा रेहाना साहिबा आपके लिए, और रुखसाना साहिबा बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आप ये प्रोग्राम को सुन रही हैं, पसंद कर रही हैं, आपने कॉल भी की, लाइंस बस माजरत कि वाकई काफ़ी बिजी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, हमें बिजी आप रखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो आप दोबारा भी ट्राई कर लीजिएगा, जब गीत लगे तो हम आपसे बात कर सकते हैं रुखसाना साहिबा, आपकी दुआओं का, आपके खलूस, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे, तो रेहाना साहिबा आपके लिए भी ख़ासूसी तौर पर यही दुआ है, लीजिए गीत सुनिएगा।

ये समीर का नाम खूबसूरत सा मीठा सा सुरीला सा गीत आप लोगों ने सुना, और रेहाना साहिबा आपके लिए हमने इस गीत को पेश किया था। जाहिर है हमें उम्मीद पूरी है कि आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा पुराना गीत था लेकिन बहुत ही खूबसूरत गीत था, उसके अल्फाज, उसका म्यूज़िक जो था बहुत ज़बरदस्त था। तो देखिए ये चीज़ें होती हैं, ये पसंद आया होगा गीत आपको। और अगला गीत जो है रुखसाना साहिबा, ये ख़ासूसी तौर पर आपके लिए हम पेश करने जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आप भी इस गीत को पसंद करेंगी। आपने फ़ोन किया, प्रोग्राम में शामिल हुई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी आपकी नवाजिश। आप जैसे नॉलेजेबल, पढ़े लिखे, बड़े सेंसिबल और बड़े तहम्मुल मिजाज लोग जो होते हैं ना, वो ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। आप लोगों ही में बाबे रहते हैं, ये बात हकीकत है, ये हम दिल से कह रहे हैं, बहुत हकीकत बात है ये। और इन्हीं आप जैसे लोगों की वजह से ही दुनिया जो है ना वो बहुत खूबसूरत है। एक खूबसूरत सी गज़ल है हमारे पास, वो हम डॉक्टर खुर्शीद रिजवी की लिखी हुई, रुखसाना साहिबा आपके नाम करते हैं। दिलों में हैसियत रफ्तगां बदल जाए, दिलों में हैसियत रफ्तगां बदल जाए, अगर ये वहम ज़मानो मका बदल जाए। अजब नहीं कि सितारा कोई गुजरता हुआ, मदार गर्दिश सैयारगां बदल जाए। वाह, अल्लाह कुछ भी कर सकता है। अजब नहीं कि सितारा कोई गुजरता हुआ, मदार गर्दिश सैयारगां बदल जाए। ज़मीं भी हो नए सूरजों में घिर के नई, ज़मीं भी हो नए सूरजों में घिर के नई, ज़मीं के सर पे अगर आसमां बदल जाए। ये कहनगी जो बहार व खिज़ां में है न रहे, ये माज़त कोहनगी, ये कोहनगी जो बहार व खिज़ां में है न रहे, नई हवाएं चले गुलसितां बदल जाए। नज़ारा क्या है बस एक ज़ाविया निगाह का है, नज़ारा क्या है बस एक ज़ाविया निगाह का है, निगाह बदले तो ये खाकदां बदल जाए। हर एक ज़र्रा है अपनी जगह जहाँ की शनाख्त, अगर जहाँ में ना हो हम जहाँ बदल जाए। अगर गौर कीजिए तो सामीन कराम, जो बातें अभी हो रही थी जो अशफाक अहमद साहब के हवाले से, और जो अभी हमने बातें कहीं, और रुखसाना साहिबा आपके साथ भी थोड़ी बहुत इसी हवाले से बात हुई, ये गज़ल देख लीजिए, ये अल्लाह की कुदरत होती है, ये एक हुस्ने तफा किसी को कहते हैं। आप जो बात कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, उससे कोई ऐसी शायरी, हालांकि ये बस इत्तफाकन हमने गज़ल निकाली और वो उसके साथ बिल्कुल मैच कर रही है, उस सोच के साथ, उस तफक्कुर, उस फ़िक्र के साथ। अगर गौर से दोबारा इस गज़ल को अपने सुनिए कि दिलों में हैसियत रफ्तगां बदल जाए, अगर ये वहम ज़मानो मकां बदल जाए। अजब नहीं कि सितारा कोई गुजरता हुआ, मदार गर्दिश सैयारगां बदल जाए। ज़मीं भी हो नए सूरजों में घिर के नई, ज़मीं के सर पे अगर आसमां बदल जाए। ये कोहनगी जो बहार व खिज़ां में है न रहे, नई हवाएं चले गुलसितां बदल जाए। और क्या खूबसूरत शेर है, नज़ारा क्या है बस एक ज़ाविया निगाह का है, निगाह बदले तो ये खाकदां बदल जाए। हर एक ज़र्रा है अपनी जगह जहाँ की शनाख्त, अगर जहाँ में ना हो हम जहाँ बदल जाए। यानी जैसे आप हैं वैसा ही जहान है, आप अच्छे होंगे जहान अच्छा होगा, आप बुरे होंगे जहान भी बुरा हो जाएगा, दुनिया भी बुरी हो जाएगी। तो रुखसाना साहिबा फ़िलहाल ये गीत आपके लिए पेश कर रहे हैं। वैसे आपके लिए गीत हमने एक और पेश करना था, हमें याद आया कि सियाना साहिबा अपने गीत के इंतज़ार में होंगी, जरका साहिबा ने फरमाइश की थी उनके लिए। तो सियाना आपके लिए ये गीत है, दिस सॉन्ग इज़ फॉर यू सियाना, आई होप यू वुड लाइक इट, एंड द नेक्स्ट कमिंग अप सॉन्ग वुड बी फॉर रुखसाना साहिबा आपके लिए। तो लीजिए सियाना, इस गीत को सुनिएगा।

0: जी सामिने कराम, ये गाना किसके लिए था, किसके लिए था? जी सियाना, आपके लिए हमने ये खूबसूरत सा गीत जो था ये पेश किया।
1: रब दी रजा च रहिंदा मौजा माणदा।
0: ये तो आगे कुछ और चल गया। बहरहाल सियाना, होपफुली यू लाइक दिस सॉन्ग, क्योंकि थोड़ा सा नया था, थोड़ा सा ज़रा धूम धड़के वाला तेज़ था, तो हमने सोचा कि आप चूंकि यंगस्टर्स में से हैं तो इसलिए आपको गीत बहुत अच्छा लगेगा। और अब जो गीत आ रहा है वो है रुखसाना साहिबा आपके लिए। होपफुली आप इस गीत को पसंद करेंगी, तो लीजिए इस खूबसूरत से गीत को सुनिएगा। और समीरा साहिबा आपके लिए भी ये खूबसूरत सा गीत, उम्मीद है कि अभी भी आप प्रोग्राम को सुन रही होंगी, लीजिए सुनिएगा।
1: लगते हैं
2: क्या?

0: जी हाँ, बड़े अच्छे लगते हैं आप सब लोग, बहुत अच्छे लगते हैं हमें, दिल से अच्छे लगते हैं, ये हकीकत है। समीरा साहिबा, आप जैसे खूबसूरत लोग, रेहाना साहिबा, नाहिद साहिबा, रुखसाना साहिबा, जरका साहिबा, ये आप सब जो है ना, बहुत खूबसूरत फूलों का एक गुलदस्ता है, हकीकत है ये। और एक दूसरे के साथ हर एक अपना अपना रंग है, अपनी अपनी खुशबू है, लेकिन जब आप इकट्ठे होते हैं सब, तो गुलदस्ता जो बनता है क्या ही रंग है उसके, उसके सातों रंग उसमें आ जाते हैं धनक के, और वो बिल्कुल कौसे कज़ा की तरह, धनक की तरह रंग, हर एक का अपना अपना, अपनी अपनी जगह चमकता है, और मिलके वो एक कौसे कज़ा बना देते हैं। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। एक कहावत है, जी हाँ, कहावत किस मुल्क की है, बात बताते हैं आपको कि कौन सी वाली सुनाई जाए आपको। जी, बात हो रही थी ना कि ख्वातीन जो होती है वो बेचारी, उनकी 24/7 की जॉब होती है, बेचारों को छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी के रोज़ भी छुट्टी नहीं मिलती। वो एक था, कहा जाता है ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो बाज़ अवकात कुछ लोगों बेचारों के साथ ऐसा ही मामला होता है, खासूसन कुछ ख़वातीन के साथ, और वो भी घरेलू ख़वातीन के साथ। तो जर्मन की एक कहावत है, जर्मनी के मुल्क की, कहते हैं वहाँ पे कि हकीकी मानों में घर में सिर्फ एक नौकर काम करता है, हकीकी मानों में घर में सिर्फ एक नौकर काम करता है, और वो होता है मालिक। क्या खूबसूरत बात है जी जर्मन वालों की। वो कहते हैं, कहावत है उनके यहाँ कि हकीकी मानों में घर में सिर्फ एक नौकर काम करता है, और वो नौकर कौन होता है, घर का मालिक। और ये बात सच है, हकीकत है, जिन्हें हमें, हम कहते हैं ना, घर की मालिका जी औरत होती है, बीवी होती है, माँ होती है, उस बेचारे को तो छुट्टी ही नहीं होती। वो मालिका तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम भी उसी को करना पड़ता है। और ये बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हम ये समझते हैं कि औरत का काम है, घर औरत ही से बनता है, औरत ही बनाती है ज़्यादातर, मर्द का उसमें बेशक हाथ है। वो कहा जाता है ना कि लाइफ पार्टनर और शरीक हयात, इसीलिए कहा जाता है, उनकी सपोर्ट होती है, आपस में मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन घर का ज़्यादा बोझ जो होता है ना, काम काज की बात हो रही है सिर्फ कमाने की नहीं, वो फिर ज़्यादातर औरत ही पे होता है। कि वो हाँ, यहाँ इन मुल्कों में बेचारे कुछ मर्द हजरात ऐसे हैं कि जिन्होंने, जिन पर डल गए ऐसे बोझ, या वो क्या कहते हैं कि बेचारों को करना पड़ता है, मजबूरन करना पड़ता है, तो ये सिलसिला चलता रहता है, बस काम करते रहिए मिलजुल के। अब हम देख रहे हैं, शुक्र है कि हमने गीत नहीं लगाया, वरना काटना पड़ना था इतना खूबसूरत गीत। और फिर जो हमारे लिसनर्स हैं जिनको मोहम्मद रफ़ी बहुत पसंद है, उनको बहुत गु़स्सा आ जाता कि जी इतना खूबसूरत गीत और उसे काट दिया गया। शुक्र है ब्रेक पे नज़र पड़ गई तो पता चला कि जी बहुत कम वक्त बाकी है, इसलिए हम इस ब्रेक के बाद खूबसूरत सा गीत पेश करेंगे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बहुत सुनिएगा, बहुत आपको यकीनन मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। तो उस दौरान हम क्या कर देते हैं, उस दौरान हम कोई और अच्छी सी शायरी आपके हम गोश गुजार करते हैं। कौन सी शायरी पेश की जाए आपके लिए? अब ये बहुत ही खूबसूरत सी एक नज़्म है, शाइस्ता मुफ्ती की लिखी हुई, और इसका उन्वान है अनकहे लफ्ज़। लिखती हैं, गौर से सुनिएगा, वो सारे लफ्ज़ जो लिखे नहीं गए हैं अभी मेरे लहू में रवा हैं सदाकतों की तरह। मैं बूंद बूंद हकीकत का जहर पीती हूँ, मैं अश्क अश्क सुलगती हूँ रत जगों की तरह। वो सारे लफ्ज़ जो लिखे नहीं गए हैं अभी ख्याल कुन की सदाओं के मुंतज़िर हैं अभी। ज़मीन खुल्द में कलियों की आबियारी को मेरे ख्याल के अनफास मोतबर हैं अभी। रिहाई देने को बेचैन हैं मेरी आँखें कि अश्क बन के टपक जाएं मेरी तहरीरें। अभी इसको यहीं रोकते हैं ताकि ब्रेक जाया ना हो, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं।
1: Asian Radio 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to Bradford Asian Radio
1: 1413 AM and online.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: Mubarak Eid Mubarak.
9: बॉलीवुड एशियन रेडियो के सभी सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से दिली ईद मुबारक
7: मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
13: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
14: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
13: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
14: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274 477257 दुबई ज्वेलर्स
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
13: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: पहले मुंह हाथ धो लो, याद नहीं आज दावत पे जाना है।
1: अभी तो बहुत वक्त है, गीत अधूरा रह जाए तो अच्छा नहीं होता। गाओ।
0: मुझे बहुत दुख होता है, सुने मैंने अच्छी तरह से गाना सीखा।
1: जितना सीखा उतना ही बहुत है मेरे लिए अरुणा, उन्हीं से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है जैसे आदमी उसके लायक नहीं।
0: मैं बताऊं, ऐसी बातें तुमने कहां से सीखी?
1: कहां से सीखी?
0: सीखी भी नहीं, चुराई है मेरी बातों से।

आप तमाम ब्रेडफर्ड एशियन रेडियो जो सुन रहे हैं 1413 AM पे ऑनलाइन और डैब के जरिए, उन सब के नाम हम इसे करते हैं, लिखती हैं शाइस्ता मुफ्ती, वो सारे लफ्ज़ जो लिखे नहीं गए हैं अभी मेरे लहू में रवा हैं सदाकतों की तरह। मैं बूंद बूंद हकीकत का जहर पीती हूँ, मैं अश्क अश्क सुलगती हूँ रचकों की तरह। वो सारे लफ्ज़ जो लिखे नहीं गए हैं अभी, ख्याल कुन की सदाओं के मंतजर हैं अभी, ज़मीन खुल्द में कलियों की आबियारी को मेरे ख्याल के अनफास मोतबर हैं अभी। रिहाई देने को बेचैन हैं मेरी आँखें कि अश्क बन के टपक जाएं मेरी तहरीरें। मैं शाम के सभी मंजर हवाओं में देखूं, मैं शाम के सभी मंजर हवाओं में देखूं, उजाले बन के बिखर जाएं मेरी तस्वीरें। वो सारे लफ्ज़ जो लिखे नहीं गए हैं अभी, मैं सोचती हूँ इन अल्फाज की खामोशी को, मैं सोचती हूँ इन अल्फाज की खामोशी को बसीत बहर की गहराइयाँ अता कर दूँ। वो काफिले के जो महसूर हैं खराबों में, जरस की गूंज की मानिंद, उन्हें रिहा कर दूँ। वो सारे लफ्ज़ जो लिखे नहीं गए हैं अभी। बहुत खूबसूरत ही नज़्म शाइस्ता मुफ्ती की, बहुत खूबसूरत ख्याल, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बांधा, एक एक लफ्ज़ नगीने की तरह फिट बैठता है इस खूबसूरत सी नज़्म में, और बहुत ज़बरदस्त ख्याल है। इंसान बहुत सी बातें सोचता है, बहुत दफ़ा उसके जहन में बड़ी अच्छी अच्छी बातें आती हैं, लफ्ज़ अल्फाज आते हैं, ख्यालात आते हैं, जुमले आते हैं, लेकिन चूंकि उस वक्त वो इतनी तवज्जो नहीं देता, लिखता नहीं है, रिकॉर्ड नहीं कर लेता, इसलिए फिर वो जहन से महफ हो जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात वही अल्फाज तस्वीरें बन के, ख्याल की शक्ल में, ख्वाब की शक्ल में, फूलों की शक्ल में इंसान के सामने आ जाते हैं। कुछ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं कि वो जो इंसान ने सोचा होता है ना, वही सोच उसके सामने जैसे मुजस्सम एक शक्ल इख्तियार कर लेती है, और वो उसको लगता है कि ये तो वही चीज़ है जिसके बारे में वो सोच रहा था, वो ख्याल कर रहा था। तो बड़ी खूबसूरत नज़्म है कि कभी अशकों में ढल जाते हैं वो अल्फाज, कभी वो जो अनकहे अल्फाज होते हैं, ख्यालात होते हैं, हंसी बन के आपके लबों पे फूट पड़ते हैं, कभी वो अल्फाज जो हैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आते हैं बग़ैर किसी वजह के, दूसरे शख्स को पता नहीं चलता कि ये क्यों मुस्कुरा रहा है। कभी वो ख्याल जो हैं वो आपको गमगीन कर देते हैं, अफसरदा कर देते हैं, वो ऐसा ख्याल होता है ना। तो कभी आप ख्वाबों में उन चीज़ों को देखते हैं, आपके लाशऊर में, तहतुशऊर में वो चीज़ें मौजूद रहती हैं, और वो बार बार आपके सामने किसी न किसी शक्ल में आती रहती हैं। इंसान की वही बात है कि जो सोचता है, जो गौर व फिक्र करता है, जो तदब्बुर करता है, वो इन बातों को महसूस भी कर सकता है, और इन बातों को उन पे गौर भी करता है, सोचता भी है। लीजिए अब ये खूबसूरत सा गीत, समीरा साहिबा, जरका साहिबा, रेहाना साहिबा, नाहिद साहिबा, और कौन शामिल हुई थी, जी कौन थे शामिल, जनाब ख़ास तौर पर जो महबूब इलाही साहब आप शामिल हुए हमारे हैं मैनचेस्टर से, चौधरी रुखसार साहब, वो काफ़ी अरसे से गायब हैं, उम्मीद है कि वो खैर आफ़ियत के साथ हों, हमारी दुआ है उनके लिए, क्योंकि काफ़ी देर हो गई उनसे बात नहीं हुई, वरना तो वो लाजिमन अगर प्रोग्राम सुने तो प्रोग्राम में शामिल भी होते हैं, ना सिर्फ एक मरतबा बल्कि दो तीन मरतबा उनकी शिरकत होती है। तो हम भी उन्हें मिस कर रहे हैं। अगर आप सुन रहे हैं चौधरी रुखसार साहब, बस आपकी खैरियत मालूम करनी है, क्योंकि जो पुराने लिसनर स्कॉलर्स होते हैं बाकायदगी से, वो फिर याद भी रह जाते हैं, जिस तरह आप हमें याद रखते हैं हम भी आपको याद रखते हैं। तो बहरहाल अगर आप सुन रहे हैं तो आप प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। लीजिए सुनिएगा गीत।

जी समीन कराम, ब्रेडफर्ड एशियन रेडियो की खूबसूरत सी ये क्या कहिए पेशकश थी आप तमाम सुनने वालों के लिए जो हमें सुन रहे हैं 1413 AM पे डैब के ज़रिए और ऑनलाइन भी। समीना साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने गीत पसंद किया, आपकी पसंद का गीत था। जी हाँ, अब हमें भी इल्म हो चुका है कि हमारे कौन से जो सुनने वाले कॉलर हैं, लिसनर हैं, उन्हें क्या चीज़ पसंद है, और कोशिश हुई होती है कि उस हवाले से हम उनके लिए गीत पेश करें। अभी आप सुनती रहिएगा प्रोग्राम को, साथ साथ रहिएगा, एक और बहुत ही ज़बरदस्त गीत हमें पूरी उम्मीद है कि आप उसको यानी उस गीत को बहुत पसंद करेंगी, तो साथ साथ रहिएगा। बहरहाल मज़े का एक और गीत आ रहा है, बहुत अरसे के बाद ये पंजाबी गीत याद आया, तो आप सब सुनने वालों के हम नाम करेंगे। उससे पहले आज का जो ख़ास वाक़या है तारीख की औराक से, वो आपको सुना दें। आप सब ने यकीनन मुग़ल शहनशाहों के बहुत से किस्से कहानियाँ सुन रखे होंगे। एक मुग़ल बादशाह का किस्सा, इंसाफ का, हम आपको गोश गुजारा पे करते हैं कि एक दफ़ा महल में किसी के रोने चीखने की आवाज़ें सुनाई दी, तो शहनशाह जो थे, अब नाम बाद में बताएंगे आपको, वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने फौरन अपने ख़ास दरबारी को बुलाकर कहा कि पता करो कि क्या हो रहा है महल में। दरबारी जो था वो लेके आया ख़बर, उसने कहा कि हजूर, महल में एक बुढ़िया है, उसे रस्सियों से बांध कर पीटा जा रहा है, और मलका आलिया भी वहाँ मौजूद हैं। शहनशाह को ये सुनकर बहुत गु़स्सा आया, क्योंकि वो बड़ा आदिल, बड़ा खुदा तर्स शहनशाह था। फौरन अपने निकला वहाँ कमरे से, हुजरे से, जहाँ से भी, महल में गया, मलिका को गुस्से भरी नज़रों से देखा, और फिर वो जो बुढ़िया थी वहाँ पे मौजूद थी, उसका बाजू पकड़कर खुद शफकत से बोला कि भई क्या किस्सा है, क्या मामला है, किस जुर्म की तुम्हें सजा दी जा रही थी। उस बेचारी ने जब शहनशाह को इतना रहम दिल पाया तो उसने अपना बताया, कहा कि हजूर, मेरा कसूर सिर्फ मेरी सच्चाई है और साफ गोई है, जो मलिका आलिया को पसंद नहीं आई। असल वाकया ये है कि मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी, अब बुढ़ापे और कमज़ोरी के बायस मेहनत करने से तो कासिर हूँ, जब नौबत फाकों तक पहुँची तो मैं मलिका के हाँ मदद देने पहुँची, महल में आ गई मलिका नूरजहाँ के हाँ, और मलिका आलिया की खिदमत में अपनी मुफलसी और परेशानी का हाल बयान किया, और बस इतना कह दिया कि जो गरीबों पर रहम नहीं करता, खुदा उस पर तरस नहीं करता या रहम नहीं खाता। बस ये फिक्रा सुनना था कि मलका आलिया तैश में आ गई और मुझे सज़ा का हुक्म दिया, तो मैं तकलीफ से चिल्लाने लगी, और आप तशरीफ़ ले आए, अब आप ही इंसाफ फरमाइए कि मैं खतावार हूँ या बेकसूर। शहनशाह ने जब बुढ़िया की बात सुनी तो मलिका से मुखातिब होकर कहा कि मलिका, मुझे तुमसे मोहब्बत ज़रूर है, तुम हमारी मलिका हो, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें नादार और गरीब आवाम पर जुल्म करने की छुट्टी दे दी जाए, तुम्हें अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, बेहतर यही है कि बुढ़िया से माफ़ी मांगो, वरना तुम्हें सज़ा के तौर पर 6 माह के लिए जेल खाने में कैद कर दिया जाएगा। मलिका नूरजहाँ को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई अपनी, कि जी वो मलिका हो हिंदुस्तान की और वो एक गरीब नादार बुढ़िया से माफ़ी मांगे, जाहिर है आना आड़े आ जाती है इंसान के, उसे इनकार कर दिया। शहनशाह ने यह सुनकर, ज़रा गौर कीजिए वाक़या, ये सच्चा वाक़या है ज़मीन कराम, कतन नरमी इख्तियार नहीं की और अपने वज़ीर आज़म को हुक्म दिया कि मलिका को 6 माह के लिए कैद खाने में बंद कर दिया जाए। अब बादशाह था, तामील तो होनी थी हुक्म की, उसके हुक्म की तामील हुई और मलिका कैद खाने में बंद कर दी गई। अब इस बात को चंद ही घंटे गुजरे थे कि मलिका जो थी उसने जेल के एक मुहाफिज के ज़रिए शहनशाह को इत्तला भिजवाई कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है और बुढ़िया से माफ़ी मांगने को तैयार है। शहनशाह ने जब ये सुना, जो भी उसके पास पैगाम आया, तो फिर उसने सुनकर मलिका को रिहाई दिलवा दी, और मलिका ने ना सिर्फ बुढ़िया से माफ़ी मांगी बल्कि उसकी माली इमदाद भी की। और शहनशाह ने इससे बढ़ के आगे और क्या किया कि उसने उस बुढ़िया के लिए ताहयात ताउम्र एक वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। समीन कराम, ये जो इंसाफ पसंद शहनशाह था, बादशाह था, मुग़ल बादशाह, ये था शहनशाह जहांगीर। अदल जहांगीर बड़ा मशहूर है, बड़े मशहूर वाक़यात हैं। उन्होंने जंजीर लटकवा रखी थी अपने महल के बाहर, बहुत बड़ी सा वो था, जंजीर के साथ घंटी वो थी, तो जो भी इस्साइल होता था, जिसका भी कोई मामला होता था ऐसा, तो वो आके उस घंटी को बजाता था तो ज़ारे पूरे महल में इतला पहुंच जाती थी कि कोई फरियादी आया है, और फिर उसका सुना जाती थी उसकी बात, उसका मसला हल करने की पूरी सी कोशिश की जाती थी। सभी ने कहा ऐसे शहनशाह गुजरे हैं, ऐसे अच्छे लोग कल भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं, रहती दुनिया तक रहेंगे, इसीलिए दुनिया चल रही है।
عدل کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن اپنی سی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جہاں تک کر سکتے ہیں آپ عدل کیجیے. اور دیکھ لیجیے آج بھی اتنے سالوں سال گزر گئے، لیکن شہنشاہ جہانگیر کی انصاف پسندی، اس کا عدل آج بھی اچھے معنوں میں یاد کیا جاتا ہے. یہ تھا آج کا تاریخی واقعہ، اور لیجیے اب یہ خوبصورت سا گیت سنیے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے تمام سننے والوں کے لیے.

0: जी सामिया कराम, गीत जल्दी ही ख़त्म हो गया। खूबसूरत गीत था, बहुत अच्छा गीत था। सिद्धू मूसेवाला की आवाज़ में गीत था, पंजाबी था। थोड़ा थोड़ा जायका बदलना चाहिए बाज़ औक़ात। लीजिए अब चलते हैं हम ब्रेक की जानिब। सुनते रहिए ब्रेडफ़ोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
9: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
10: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
11: बालियां अंगूठियां और हार,
10: जो दुल्हन करे सिंगार,
11: आज ही मामू काके की दुकान,
10: खालिस सोने की पहचान,
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
11: आपकी शान
10: हमारी आन,
11: क्वालिटी की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95VR, 01274491442,
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
12: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
13: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
12: सोफी ज्वेलर्स?
13: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
12: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014।
11: सोफी ज्वेलर्स।
14: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
15: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
16: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
17: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
16: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
17: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
18: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

जी सामिनी कराम, बहुत खूबसूरत सा आपने गीत सुना, यकीनन आपने पसंद किया होगा। खूबसूरत सी सदाबहार आवाज़ लता मंगेशकर की, क्या खूबसूरत शायरी है। बस ये गीत जो है ना, वही बात है, रहे ना रहे हम, उन वो तो नहीं रही हैं, लेकिन देख लीजिए उनकी आवाज़ अभी भी फिज़ाओं में ऐसे ही गूंजती है, बल्कि पहले से ज़्यादा ज़ोर से गूंजती है, क्योंकि लोग बहुत पसंद करते हैं उनको आज भी, और शायद लगता है कि रहती दुनिया तक ये आवाज़ गूंजती ही रहेगी, लोगों के कानों में रस घोलती रहेगी। समीना करम, हमारे पास एक और बहुत खूबसूरत सी चीज़ है, जावेद इकबाल की लिखी हुई बहुत खूबसूरत सी नज़्म मौजूद है, बड़ी बामानी नज़्म है, नाम है इसका है मोड़ वाला दरख्त। तो ज़रा आप सुनिएगा, जावेद इकबाल लिखते हैं मोड़ वाला दरख्त के हवाले से कि गली के मोड़ से थोड़ा आगे जहाँ फुटपाथ ख़त्म होता है और बिजली के खंभे का साया मुड़ने लगता है, एक दरख्त है, इसकी छाँव में हर उम्र की कहानियाँ रुकी हैं। वो जानता है कौन सा बच्चा हर शाम माँ के डर से छत पर नहीं जाता, बल्कि उसके साए में बैठकर पेंसिल से फर्श पर कुछ बनाता है फिर मिटा देता है। वो लड़की जो 10 बरस पहले सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े रोज़ इसी मोड़ से जाती थी, अब कहीं और है, मगर दरख्त अब भी हर शाम वैसी ही चाप सुनता है और पत्ते थोड़ा थोड़ा लरसते हैं। अब वो नौजवान याद है जो सेलफोन थामे मुस्कुराता हुआ गुजरता था, फिर एक दिन खामोश होकर गुजरने लगा और फिर गुजरना बंद ही हो गया। दरख्त ने उसकी खामोशी सुनी थी, चीखे नहीं। वो खिड़की जिससे कभी हंसी नीचे गिरती थी अब बंद रहती है। दरख्त जानता है कौन सा दरीचा रात भर थोड़ा सा खुला रहता है, किस दिल के मौसम बदले हैं, किसके ख्वाब ने पत्ते झाड़ दिए हैं। उसे याद है वो जोड़ा जो बरसों पहले उसकी छाँव तले बैठा करता था, अब इन दोनों में से एक नहीं आता। बारिश के दिन उसके तने में नमी उतरती है तो पुराने लम्स जाग उठते हैं, वो जो किसी मारुख ने चलते चलते अचानक मस्ती में बगैर कुछ कहे पत्तों को छुआ था। दरख्त हर बार इस याद के कर्ब से निजात पाने को एक पत्ता ज़मीन पर गिरा देता है। दोबारा पढ़ते हैं, शायद कुछ आपसे मिस हो गया हो, कि मोड़ वाला दरख्त, जावेद इकबाल की लिखी हुई ये नज़म है, आज़ाद नज़म। गली के मोड़ से थोड़ा आगे जहाँ फुटपाथ ख़त्म होता है और बिजली के खंभे का साया मुड़ने लगता है, एक दरख्त है, इसकी छाँव में हर उम्र की कहानियाँ रुकी हैं। वो जानता है कौन सा बच्चा हर शाम माँ के डर से छत पर नहीं जाता, बल्कि उसके साए में बैठकर पेंसिल से फर्श पर कुछ बनाता है फिर मिटा देता है। वो लड़की जो 10 बरस पहले सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े रोज़ इसी मोड़ से जाती थी, अब कहीं और है, मगर दरख्त अब भी हर शाम वैसी ही चाप सुनता है और पत्ते थोड़ा थोड़ा लरसते हैं। उसे वो नौजवान याद है जो सेल फोन थामे मुस्कुराता हुआ गुजरता था, फिर एक दिन खामोश होकर गुजरने लगा और फिर एक दिन गुजरना ही बंद हो गया। दरख्त ने उसकी खामोशी सुनी थी, चीखे नहीं। वो खिड़की जिससे कभी हंसी नीचे गिरती थी अब बंद रहती है। दरख्त जानता है कौन सा दरीचा रात भर थोड़ा सा खुला रहता है, किस दिल के मौसम बदले हैं, किसके ख्वाब ने पत्ते झाड़ दिए हैं। उसे याद है वो जोड़ा जो बरसों पहले उसकी छाँव तले बैठा करता था, अब इन दोनों में से एक नहीं आता। बारिश के दिन उसके पत्तों में तने में नमी उतरती है तो पुराने लम्स जाग उठते हैं, वो जो किसी मारुख ने चलते चलते अचानक मस्ती में बगैर कुछ कहे पत्तों को छुआ था। दरख्त हर बार उस याद के कर्ब से निजात पाने को एक पत्ता ज़मीन पर गिरा देता है। समीने कराम, ये बहुत ही खूबसूरत सी नज़्म थी जावेद इकबाल की, इसमें जितनी गहराई है, जो सुनने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, जो शायरी पसंद करते हैं, शायरी को महसूस करते हैं, उन्होंने यकीनन महसूस किया होगा। और ये हर गली के नुक्कड़ पर, हर गली के मोड़ पे कोई ना कोई ऐसा दरख्त होता है, कोई पौधा होता है, आपको शायद वो महसूस नहीं होता, लेकिन वो दरख्त
جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو محسوس کرتا ہے، نہ صرف محسوس کرتا ہے بلکہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے، محبت سے یاد رکھتا ہے. اور پھر محبت ہو جہاں پہ، وہاں پہ اداسی ہوتی ہی ہوتی ہے. یہ ناممکن ہے کہ محبت ہو اور اداسی نہ ہو، کیونکہ یہ جو جدائی کا احساس ہوتا ہے، جدائی کا جو کرب ہوتا ہے، یہ زندگی میں آتا ہی آتا ہے. کتنے بھی آپ قریب ہوں، کتنے بھی آپ خوش قسمت ہوں، محبت کرتے ہوں، لیکن جدائی سہنی پڑتی ہے. موت بھی جدائی ہی ہے نا، وہ ایک مستقل جدائی ہے. ویسے ہوتا ہے کہ آپ روزی روٹی کے چکر میں کہیں باہر چلے گئے، کچھ اور ایسا ہو گیا، تو آپ اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن اس کائنات میں ہر چیز ہر کسی کو محسوس کرتی ہے. کبھی اس کو سوچئے گا، غور کیجئے گا اس پہ، تو بہت آپ کو اچھا لگے گا. لیجئے، بہت ہی خوبصورت سا گیت ہے، اسی حساب سے پسند کریں گے آپ سننے والے.

जी नबीला एहसान, बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश प्रोग्राम सुनने, पसंद करने और फिर शामिल होने के लिए। ये बहुत खूबसूरत सा गीत जो है ये नबीला साहिबा आपके नाम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप पसंद करेंगी। आइंदा ज़रा जल्दी फ़ोन कीजिएगा तो हम बहुत अच्छा सा आपकी पसंद का गीत लगाएंगे। फ़िलहाल नबीला एहसान साहिबा, ये खूबसूरत सा गीत खसूसी तौर पर आपके लिए।

0: जी समीने कराम, बहुत क्लासिक गीत आपने सुना, यकीनन पसंद किया होगा और वाकई पसंद किया गया, इसमें कोई शक नहीं। मोहम्मद रफ़ी की सदाबहार खूबसूरत सी सुरीली आवाज़। नबीला साहिबा, जैसा कि हमने आपसे कहा कि वक्त नहीं है कि कोई और गीत आपके लिए पेश किया जाए, क्योंकि प्रोग्राम अपने इख्तिताम तक पहुँचने को है, चंद लम्हात बाकी हैं, तो हम कटाफटा गीत आपके लिए पेश नहीं करना चाहते थे। पहली मरतबा आप शामिल हुई प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते कोशिश कीजिएगा थोड़ा वक्त से पहले फ़ोन कीजिएगा, तो हम की फरमाइश भी पूरी कर सकते हैं। अब जाते जाते अपनी गज़ल, हम अपनी गज़ल नहीं यानी कि एक गज़ल आपके नाम हम करते हैं, तमाम सुनने वालों के, खासूसन जिन्होंने आज प्रोग्राम में शामिल होके इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए, इसको खूबसूरत बनाया। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, वो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। इस एक कच्ची सी उम्र वाली के फलसफे को कोई ना समझा, जब उसके कमरे से लाश निकली, खतूत निकले तो लोग समझे। वो ख्वाब थे ही चमेलियों से, सो सब ने हाकिम की कर ली बैद, फिर एक चमेली की ओट में से जो सांप निकले तो लोग समझे। वो गांव का एक ज़ईफ दहकां सड़क के बनने पे क्यों खफा था, जब उसके बच्चे जो शहर जाकर कभी न लौटे तो लोग समझे। क्या खूबसूरत शायरी है। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, वो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। सामिने कराम, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। हमारा आपका अल्लाह हामी व नासिर, अल्लाह हाफिज़।
1: योर पीसी और लैपटॉप, द बेस्ट एशियन म्यूजिक ऑनलाइन। You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak.
9: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो के सभी सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से दिली ईद मुबारक।
8: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
1: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो
3: भी।

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: कौन सा मैं नाम ढूंढूं उस सितमगर के लिए, कौन सा मैं नाम ढूंढूं उस सितमगर के लिए जिसने रिश्ते तोड़ डाले जिंदगी भर के लिए।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: White Abbey Road पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
8: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
10: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
9: सोफी ज्वेलर्स
10: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
13: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
1: यू आर लिसनिंग टू ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM एंड ऑनलाइन
2: लिसन ऑन योर पीसी और लैपटॉप द बेस्ट एशियन म्यूजिक ऑनलाइन
0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: The Hindi Urdu Music Show on Bradford Asian Radio.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
10: Tora Bhadar Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki ata garaiyon se dil ki Eid Mubarak.
9: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
11: Aapke dilon mein ras kholne wali sadaaye dil nawaz.
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
3: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
3: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
3: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online।

ये ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज़ है 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में। दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वह बाप जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पर तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जो हमें इस वक्त आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी आज की इस महफिल गज़ल उसने छेड़ी की जीनत तो हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जो हमें इस वक्त आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी आज की इस

दोस्तों ये बताइए वीकेंड आपका कैसा गुजरा? मेरा तो हमेशा की तरह बेइंतहा मसरूफ गुजरा। आज मौसम का अहवाल कुछ यूँ है कि जब मैं प्रोग्राम करने आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा था तो टेम्परेचर 17 सेंटीग्रेड था। कहा यह जा रहा है कि 19 सेंटीग्रेड तक जाएगा। सुबह से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और कभी कभी हल्के बादल छा जाते हैं और बूंदाबांदी शुरू हो जाती है और कभी कभी सूरज बादशाह अपनी झलक दिखाते हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक ये सिलसिला दोपहर तक जारी रहेगा, उसके बाद मौसम बेहतर होने का इम्कान मौजूद है। टेम्परेचर रहेगा 19 सेंटीग्रेड तक। आप सुनाइए आपके यहाँ मौसम कैसा है, आपके शहर में मौसम कैसा है, आपके मुल्क में मौसम कैसा है और आपके दिलों का मौसम कैसा है। गजल उसने छेड़ी का आगाज उसके नामे नामी से हो चुका है जिसे लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। कोई खुदावंद करीम कहकर इल्तिजा करता है, कोई भगवान कहकर प्रार्थना करता है और कोई वाहे गुरु कहकर अरदास करता है और कोई गॉड या लॉर्ड कहकर घुटने टेकता है। दोस्तों उसे किसी भी नाम से किसी भी वक्त किसी भी लहजा किसी भी आन किसी भी दुख किसी भी तकलीफ किसी भी परेशानी किसी भी मुसीबत में एक बार दिल की गहराइयों से पुकार कर देखिए, वो हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहता है। और सच्चाई ये है, हकीकत यह है कि हम सब झुकते एक ही के सामने हैं, मांगते एक ही से हैं और बेशक वो हम सब का रब है, वो हम सब का रब्बुल आलमी है।

स्टूडियो में तो खासी गर्मी है, आप सब जानते हैं, यहाँ बाहर की नस्बत 3-4 दर्जे ज़्यादा ही रहता है। अभी प्रोग्राम का आगाज़ करने के बाद मैं ठंडा पानी की बोतल पी के आऊँगा, पानी, और पानी लेकर आऊँगा। और आप भी पानी का इस्तेमाल, अगर आप जिस इलाके में हैं गर्मी की शिद्दत है, तो पानी का कसरत से इस्तेमाल जारी रखें। अब हम गो मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे मेहमानों के इस्माइल ग्रामी मैंने नोट कर लिए हैं, लेकिन आप सब जानते हैं, बरसों से गज़ल सुनशेरी सुन रहे हैं, कि हम एक बहुत ही हसीन गीत का तोहफा अपने उन तमाम सामीन और नाज़रीन के नाम लाया करते हैं जिनकी आमद हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाती है और इसकी इज्जत व तौक़ीर में इजाफा करती है। गो हमारे जो मकामी सुनने वाले हैं, इनकी आमद से भी चार चांद लगते हैं, लेकिन ये बहुत कम तादाद में हैं, क्योंकि हमारा ये रेडियो स्टेशन जो है अभी मीडियम वेव पर है और इसे अब FM की नस्बत कम सुना जाता है, आप सब जानते हैं। सो असल रौनक होती है मेहमानों की आमद से, जो दुनिया के चार कोनों से हमारे पेज पर तशरीफ़ लाकर इसे चार चांद लगाते हैं। और आगाज़ हमेशा हम करते हैं खूबसूरत गीत के तोहफे से, जिसे हम किया करते हैं अपने उन तमाम सामीन और नाज़रीन के नाम कि जिनकी आमद हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाती है और इसकी इज्जत और तौक़ीर में इजाफा करती है। मैंने आते ही पंखा लगा लिया है, अब ज़रा खिड़की खोलूँगा और दरवाज़ा, ताकि थोड़ी सी गर्मी यहाँ पर कम हो। आप भी अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आइए आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत गीत से, जिसे हम कर रहे हैं अपने उन तमाम अहबाब के नाम के जिनकी आमद हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाएगी और इसकी इज्जत और तौक़ीर बढ़ाएगी।

दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। मैं हूँ रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। हमारे मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। तशरीफ ला चुके हैं वकार साहब, आप हमारे हमराह वेकफील्ड से मौजूद हैं। रियासत साहब हडर्सफील्ड की हसीन फजाओं से। सुमैरा बुटिया ब्रैडफोर्ड 3 से। रियाज अहमद साहब ब्रैडफोर्ड की हसीन वादी से। डॉक्टर माहरुख साहब आप ब्रैडफोर्ड की हसीन वादी से। और इन तमाम अहबाब ने आप सब की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा भेजा है। तशरीफ लाए हैं लैया पंजाब पाकिस्तान से, हमारे खूबसूरत लिसनर जनाब नज़ीर अहमद साहब। और नज़ीर साहब की ये मोहब्बत है कि पेज पर आने वालों में अक्सर व बेशतर ये हमारे पहले खूबसूरत लिसनर और व्यूअर्स होते हैं जो तशरीफ़ लाते हैं। कहते हैं कि मैं लैया पंजाब पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सदा सलामत रहें, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप खुद बहुत अच्छे हैं कि इस कदर बाकायदगी के साथ हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाकर इसकी इज्जत और शान बढ़ाते हैं। आपके लिए हम आपको नहीं चाहते कि आप इंटरनेट के चक्कर में फंस के प्रोग्राम से और अपने तोहफे से महरूम हो जाएं। आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका मोहब्बत भरा सलाम नज़ीर हम तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहे हैं। आप कभी ये नहीं तहरीर करते, अपनी पसंद का कोई गीत ज़रूर लिखा कीजिए कि हमें पता चले कि हमारे नज़ीर साहब की पसंद कैसी है। लेकिन हम अपनी पसंद का वो गीत जो हमें बहुत दिल के करीब होता है आपकी मोहब्बत हो चाहत और प्यार के नाम करते हैं, जैसा कि ये गीत है आपकी मोहब्बतों के नाम।

0: और दोस्तों आप सुन रहे हैं बेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में और दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bedfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड में सुन रहे हैं तशरीफ ला सकते हैं 01274306677 पर।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
8: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर,
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
14: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

हो सकता है हमारे इस बीमार लिसनर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई हो। हमारी दुआएं आपके साथ हैं खालिद नवाज साहब। अल्लाह आपको रूबे सेहत करे और शिफाए कामला और आजरा नसीब फरमाए। आप सुन रहे हैं बेडफोर्ड एशियन रेडियो, मैं हूं रिफत अब्बास। आदाब उन तमाम अहबाब की खिदमत में जिन्होंने अभी अभी सुनना शुरू किया है, और आदाब उन अहबाब की खिदमत में भी जो हमारे हमरा ऑनलाइन मौजूद हैं और कसीर तादाद में हैं, उन्हें भी हम गज़ल उस शेरी में खुश आमदीद कहते हैं। अब वक्त हुआ है वेकफील्ड चलने का, जहां मौजूद हैं जनाब वक़ार साहब अपने अहल खाना के हमरा और रख्त सफ़र बांध रहे हैं एडिनबरा जाने के लिए। हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं, खुदा करे कि खैर वाफियत के साथ जाएं और खैर वाफियत के साथ वापसी पर आपके बच्चों से आपकी मुलाकात हो। साथ ही साथ हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे लीड से हमारे मोहतरम लिसनर भगत सिंह साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हैरान होंगे कि रियासत साहब आगाज़ प्रोग्राम में ही आए हैं, उनका गीत क्यों नहीं बजा? उसकी वजह यह है कि वो कहीं ज़रूरी काम से बाहर निकले हैं और कह रहे थे कि मैं अपना गीत अपने अहल खाना के साथ ही बैठ कर सुनूँगा, मैं आपको आकर मुत्तला कर दूँगा। सो अब चलते हैं हम वेकफील्ड। भगत सिंह साहब का मोहब्बत भरा सलाम तमाम सामीन और नाजरीन की खिदमत में, और तोहफा हाजिर है हमारे मोहतरम जनाबे वक़ार मियाँ का। वेकफील्ड चलते हैं, अहले वेकफील्ड को मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। वक़ार हैव अ नाइस एंड सेफ जर्नी मियाँ।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। मैं हूँ रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। अब हम आपको लीड्स लिए चल रहे हैं, जहाँ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे से लिसनर जनाबे भगत सिंह साहब। उन्होंने मोहब्बत भरा सलाम आप तमाम सामीन और नाज़रीन को पेश किया और कहते हैं कि रिफत भाई आज एक दो शेर हमारे लिए पढ़ दीजिए। भाई ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम एक कता आपके लिए पढ़ देते हैं। हजरत हसरत मोहानी का है कि उस शौक़ को रुसवा किया है न करेंगे, उस शौक़ को रुसवा किया है न करेंगे, हमने कभी ऐसा किया है न करेंगे, उस शौक़ को रुसवा किया है न करेंगे, हमने कभी ऐसा किया है न करेंगे। और महफूज है ये राज तेरे लुत्फ़ व करम का, महफूज है ये राज तेरे लुत्फ़ व करम का, अग्यार में चर्चा न किया है न करेंगे। ये आपकी मोहब्बतों के नाम भगत सिंह साहब, आपकी आमद का बेइंतहा शुक्रिया। पेश खिदमत है आपकी पसंद का गीत, कबूल फरमाइए।

0: दोस्तों वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल का। कमर्शियल के बाद आपका पसंदीदा सेगमेंट वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। आज भी हमने एक बेइंतहा खूबसूरत शायरा को खिराज तहसीन मुंतखब किया है पेश करने के लिए, और कौन है वो इसके लिए तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, साथ ही साथ एक बात आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में। दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वह अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी आज की इस बज़्म में तशरीफ़ लाना चाहें, हम खुश आमदीद कहेंगे 1274306677 पर।
1: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak.
9: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो के सभी सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से दिली ईद मुबारक।
8: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford, Severn, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्स अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिज़वी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिज़वी,
4: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

0: और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, मैं हूँ रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। वक्त हुआ है आपके पसंदीदा सेगमेंट वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। इसमें आज हम एक ऐसी नौजवान शायरा को शामिल कर रहे हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से है और इनका कलाम सुनकर एहसास होता है कि आने वाला कल इनका है। हम वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग में अपने उन ख़वातीन शुआरा को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने अदब की दुनिया में बड़ा नाम कमाया और नाम कमा रही हैं और आने वाला कल महसूस होता है कि इनका होगा। तशरीफ ला रही हैं फरीहा नकवी, आप लाहौर से आपका ताल्लुक़ है, बे इंतहा खूबसूरत अशार कहती हैं, दुनिया के चार कोनों में अपने अशार से लाखों सुनने वालों को मशहूर कर चुकी हैं। बहुत सादा अंदाज है लेकिन फिक्र बहुत आला है। तो आज की हमारी मेहमान फरीहा नकवी।
1: कि शोहरत की हवस ही नहीं जाती, एक तुम हो के शोहरत की हवस ही नहीं जाती, एक हम हैं कि हर शोर से उकताए हुए हैं।
2: क्या बात है भाई, वाह वाह, जिंदाबाद फरीहा, जिंदाबाद फरीहा। उसकी आंखें देखने वालों तुम पर वाजिब है, शुक्र करो इस दुनिया में कुछ अच्छा देख लिया।
1: आदाब दोस्तों, सबसे पहले तो शाजी आपी और रेहान भाई का बहुत शुक्रिया कि इस शानदार प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया और साहिब सदारत की इजाज़त से कुछ अशार
2: जी अता करें।
1: कयास तो बहुत सुने तू कौन है,
2: कयास
1: तो बहुत सुने तू कौन है, कहीं सुनी से क्या खुले तू कौन है। कयास तो बहुत सुने तू कौन है, कहीं सुनी से क्या तो बहुत सुने तू कौन है। कयास तो बहुत सुने तू कौन है, कहीं सुनी क्या तू कौन है। कयास तो बहुत सुने तू कौन है, कहीं

0: सोते सोते आंख अचानक खुल जाती है, एक ही खदशा नींद उड़ा कर ले जाता है। सोते सोते आंख अचानक खुल जाती है, एक ही खदशा नींद उड़ा कर ले जाता है। ख्वाब में उड़ता आता है एक मुबहम साया, मुझसे तेरा हाथ छुड़ा कर ले जाता है।
1: भाई क्या कहना है।
0: ख्वाब में उड़ता आता है एक मुबहम साया, मुझसे तेरा हाथ छुड़ा कर ले जाता है। सोते सोते आंख अचानक खुल जाती है, एक ही खदशा नींद उड़ा कर ले जाता है। ख्वाब में उड़ता आता है एक मुबहम साया, मुझसे तेरा हाथ छुड़ा कर ले जाता है।
1: क्या कहना है।
0: और तुम्हारे बाद किसी कम सुखन ने वहशत में,
1: तुम्हारे
0: बाद किसी कम सुखन ने वहशत में बुझा के सारे दिए आईनों से बातें की। तुम्हारे बाद किसी कम सुखन ने वहशत में बुझा के सारे दिए आईनों से बातें की। पलटने वाले से ये पूछना नहीं बनता, पलटने वाले से ये पूछना नहीं बनता। कहाँ गुजारे मेरे दिन, कहाँ पे रातें की।
1: क्या बात है।
0: कहाँ गुजारे मेरे दिन, कहाँ पे रातें की। पलटने वाले से ये पूछना नहीं बनता, कहाँ गुजारे मेरे दिन, कहाँ पे रातें की।
1: क्या कहना है।
0: और जिसे मज़े से अभी नींद में गवाया है, जिसे मज़े से अभी नींद में गवाया है, वो सारा वक्त किसी और की अमानत था।
1: क्या बात।
0: जिसे मज़े से अभी नींद में गवाया है, वो सारा वक्त किसी और की अमानत था। इसीलिए नहीं पूरी हुई थी एक दुआ, इसीलिए नहीं पूरी हुई थी एक दुआ। हमारा बख्त किसी और की अमानत था।
1: क्या बात है।
0: हमारा बख्त किसी और की अमानत था। और वहाँ भी रहते हैं जिस जगह दिल नहीं होता,
1: वहाँ
0: भी रहते हैं जिस जगह दिल नहीं होता। मुसाफिरों का पता मुस्तकिल नहीं होता।
1: क्या बात।
0: वहाँ भी रहते हैं जिस जगह दिल नहीं होता, मुसाफिरों का पता मुस्तकिल नहीं होता। रखा हुआ है जो इतनों को तुमने एक दिल में, रखा हुआ है जो इतनों को तुमने एक दिल में, तो ये हुजूम कभी मुश्तइल नहीं होता।
1: रखा क्या हुआ कहना है। वाह वाह वाह मुकर्रर, क्या अच्छा शेर सुनाया। वाह वाह।
0: न जाने किस हवा में उड़ रहा है दिल, तुम्हारे ख्वाब देखने लगा है दिल। न जाने किस हवा में उड़ रहा है दिल, तुम्हारे ख्वाब देखने लगा है दिल। अभी तो कॉल ख़त्म भी नहीं हुई, अभी से तुमको याद कर रहा है दिल।
1: क्या बात है।
0: और इसीलिए तो दर्द आशना है दिल, इसीलिए तो दर्द आशना है दिल, कि खुद बहुत कठा पठा हुआ है दिल। इसीलिए तो दर्द आशना है दिल, कि खुद बहुत कटा फटा हुआ है दिल। कदम कदम पे ऐसे रोकता है दिल, कदम कदम पे ऐसे रोकता है दिल। कभी कभी तो लगता है खुदा है दिल।
1: क्या बात है।
0: दिमाग तक कभी सदा नहीं गई, दिमाग तक कभी सदा नहीं गई। अजीब तर्ज का कोई खला है दिल, मेरे मुकाबले पे किसको लाओगे।
1: मेरे
0: मुकाबले पे किसको लाओगे, मेरे सिवा किसी को मानता है दिल। मेरे मुकाबले पे किसको लाओगे, मेरे सिवा किसी को मानता है दिल। तुम्हारे बाद का तो खैर क्या कहें, तुम्हारे बाद का तो खैर क्या कहें, तुम्हारे साथ भी बहुत दुखा है दिल।
1: क्या बात है।
0: तुम्हारे
1: बाद
0: का तो खैर क्या कहें,
1: वाँ वाँ।
0: तुम्हारे साथ भी बहुत दुखा है दिल।
1: क्या उम्दा शेर है। वाँ वाँ।
0: तुम्हारे बाद का तो खैर क्या कहें, तुम्हारे साथ भी बहुत दुखा है दिल। और उसे कहो कि बहुत जल्द मिलने आए हमें,
1: उसे कहो कि बहुत जल्द मिलने आए,
0: उसे कहो कि बहुत जल्द मिलने आए हमें। अकेले रहने की आदत ही पड़ना जाए हमें। उसे कहो कि बहुत जल्द मिलने आए हमें, अकेले रहने की आदत ही पड़ना जाए हमें। अभी तो आँख में जलते हैं बेशुमार चराग, अभी तो आँख में जलते हैं बेशुमार चराग। हवाए हिजर ज़रा खुल के आजमाए हमें।
1: क्या बात है।
0: अभी तो आँख में जलते हैं बेशुमार चराग, हवाए हिजर ज़रा खुल के आजमाए हमें। हर एक की बात पे कहता नहीं है दिल लब्बैक, हर एक की बात पे कहता नहीं है दिल लब्बैक, पसंद आती नहीं हर किसी की राय हमें।
1: वाह वाह।

0: और दोस्तों ये पसंद थी हडर्सफील्ड में हमारे रियासत साहब की। वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल का, कमर्शियल के फौरन बाद हम आपको लिए चलेंगे मिडिल्सब्रो, जहां पर हमारी सुमेरा बिटिया बावर्चे खाने की रानी ने एक खूबसूरत तोहफा अपनी कजन्स के नाम किया है और कहती हैं कि बहुत मज़ा आया, हम ईद पर उनकी तरफ थे, कल ही मेरी वापसी हुई है, सब साथ थे, बारबेक्यू भी हुआ। हाँ अच्छा, ये मज़े आए हैं। जीती रहो मेरा बेटा सुमेरा, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हारी और तुम्हारी दोस्त और तुम्हारी प्यारी प्यारी कज़न्स की ये अंडरस्टैंडिंग यूं ही कायम और दायम रहे, हमेशा हमारी ढेरों दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी इंशाल्लाह। कमर्शियल के वक्फे के बाद हम तुम्हारी उन प्यारी प्यारी कज़न्स के नाम, जिन्होंने बहुत उम्दा तारीफ़ कर रही थी बारबेक्यू था, उसमें तुमने शिरकत कर ली, ये बहुत अच्छी बात है। हम तो समझ रहे थे कि वो लोग आएंगे इस तरफ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर कोई बात नहीं, मुलाकात हो गई, खुशी का मौका था और अच्छा वक्त गुजरा होगा मुझे अंदाजा है।
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is.
4: And the winner is.
5: And the winner is.
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
9: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
10: बालियां अंगूठियां और हार,
9: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
9: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
9: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
11: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
10: सोफी ज्वेलर्स?
11: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
10: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
12: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
13: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
14: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, ऑन ब्रेडफोर्ड, 9622722, 9622722।
13: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
15: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
16: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
15: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
16: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
17: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
0: और दोस्तों इससे पहले कि हस्ब वादा हम आपको लेकर चलें मिडिल्सब्रा और सुमेरा बिटिया ब्रैडफोर्ड 3 से आपका तोहफा आपकी प्यारी प्यारी कज़न्स के नाम करें, हमारे एक बहुत खूबसूरत मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं जो बहुत सादा और दिलकश शख्सियत के मालिक हैं, उनसे मुलाकात कराना चाहेंगे और खुश आमदीद कहना चाहेंगे। सिराज मुनीर साहब, आप हमारे हमराह मौजूद हैं डनकास्टर सिटी से और तशरीफ़ लाई हैं हमारी प्यारी सी बहना ढेरों दुआओं के साथ शहनाज ब्रैडफोर्ड 18 से, और इन दोनों अहबाब ने आप तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश किया है। आइए चलते हैं, आपको लिए चलते हैं ओल्डहम, जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम मोहम्मद अयूब चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम रिफत अब्बास भाई, आप ठीक हैं?
0: मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं?
5: मैं भी ठीक ठाक हूँ, अभी थोड़ी देर पहले शुरू किया आपका प्रोग्राम सुनने, भाई अकेली जान है बहुत मशहूर है।
0: हाय हाय हाय, और दुकेली कब तशरीफ ला रही हैं?
5: इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक को, नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह।
0: हाँ, आपको आपकी बेगम और आपके साहबजादे का हज मुबारक हो।
5: जी सर मुबारक, ठीक ठाक है सर। जैसे आशु भाई फोन किया था मैंने कुछ 2 घंटे पहले, कल यूनिवर्सिटी को मदीना चले जाएंगे, फिर वहाँ से सुरक्षित होंगे
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें खैर आफियत के साथ लाए, हमारी ढेर दुआएं हैं।
5: हाँ, बड़ी कई सालों से देखने की बहुत ख्वाहिश थी, तो खैर
0: ये देखिए, ये जब तक दिल में ये ऐसी ख्वाहिश मौजूद ना हो तो वहाँ से बुलावा भी नहीं आता
5: जी।
0: अल्लाह ताला ने उन्हें ये सआदत नसीब की है, बहुत खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला उनकी और आपकी जोड़ी को सलामत रखे, सेहत से रखे और अपने जमान में रखे।
5: सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बेटे ने किया तो वो खाली अपना आज तो उसने किया ही किया है, लेकिन साथ 2 नौ का भी आज कर रहा है
0: माशाल्लाह।
5: खाला भी माँ ही होती है ना?
0: हाँ बिल्कुल, खाला माँ के बराबर होती है।
5: तो मुझे थोड़ी देर पहले गाना भी याद आ गया।
0: जी
5: वो है ना, जिंदगी के सफर लेते हैं आप जैसा कोई ब्रश।
0: मैंने लिख लिया है, मैंने लिख लिया है, फिक्र ही ना करें। जी अता कीजिए।
5: अच्छा ये है, कहा था याद है तुमने कि मैं हूँ चांद और तुम चांदनी मेरी, मगर चांद छुप जाए तो फिर चांदनी कैसी। कहा था याद है तुमने कि मैं हूँ फूल और तुम फूल की खुशबू, मगर जब फूल उड़ जाए कहो खुशबू बला कैसी।
0: वाह वाह वाह वाह।
5: कहा था याद है तुमने कि मैं हूँ दिल ओ मैं हूँ दिल ओ हूँ तुम धड़कने, मगर दिल टूट जाए तो कहो फिर दर्शनी कैसी।
0: वाह वाह वाह वाह।
5: कहा था याद है तुम्हें कि मैं हूँ आस और तुम जिंदगी मेरी, मगर जब आस टूटे तो कहो फिर जिंदगी कैसी। हेलो।
0: वाह वाह वाह वाह भाई, वाह वाह वाह वाह।
5: अच्छा एक और है
0: जी, आता कीजिए।
5: वो अर्शद मलिक साहब फरमा रहे थे
0: जी, क्या कह रहे थे?
5: अब हम फराज फरमा रहे हैं
0: जी।
5: शोला था जल बुझा हूँ हवाएं मुझे न दो।
0: अरे है क्या इंतखाब है, शोला था जल बुझा हूँ हवाएं मुझे न दो।
5: मैं कब का जा चुका हूँ
0: सदाएं मुझे न दो। वाह वाह वाह वाह वा।
5: जो जहर पी चुका हूँ तुमने मुझे दिया,
0: जो जहर पी चुका हूँ तुमने मुझे दिया,
5: अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे ना दो।
0: अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे ना दो। वाह वाह वाह वाह।
5: ये बड़ा करम है सलामत है जिस्म अभी,
0: आहा
5: इस ऐ खसारवाने शहर कबाएं मुझे ना दो।
0: वाह वाह वाह वाह।
5: ऐसा न हो कभी के ऐसा न हो कभी के पलट कर न आ सकूं,
0: ऐसा न हो कभी के पलट कर न आ सकूं,
5: हर बार दूर जाके सदाएं
0: सदाएं मुझे न दो। भाई वाह वाह, ये शेर दोबारा पढ़िए, बहुत खूबसूरत शेर है।
5: ऐसा न हो कभी के पलट कर ना आ सकूं, हर बार दूर जाके सदाएं मुझे न दो।
0: वाह वाह वाह वाह,
5: कब मुझको
0: इतराफ़े मोहब्बत न था फराज,
5: कब मैंने ये कहा था कि सजाएं मुझे न दो।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत इंतखाब, वाह वाह वाह वाह।
5: तो बस ठीक है जी, हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं,
0: आप जरूर सुनिए, इंशाल्लाह आपका तोहफा भी आपकी नजर करेंगे। आमद का बहुत शुक्रिया अय्यूब, खुदाफिज खुदाफिज। बेइंतहा खूबसूरत इंतखाब के साथ हमारी बज़्म में शामिल थे जनाब अय्यूब चौहान साहब। आप तशरीफ लाते हैं ओल्डहम से और हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत व तौक़ीर में इजाफा करते हैं। और अब हम चल रहे हैं आपको लेकर हश्र पे वादा। जी हाँ, ये अपने मिर्ज़ बरा बिटिया, जीती रहो, ढेरों दुआएं तुम्हारे साथ हैं। सुमेरा, आपका तोहफा आपकी कजन्स के नाम।
18: तुम जा क्यों गई?
19: मुझे एक सपना आया था, एक राजकुमार आसमान से उतरकर मेरे करीब आया और मेरी तरफ बड़े प्यार से देखने लगा। मेरी आंखों में नींद भरी थी इसीलिए पहचान न सकी।
18: तुम्हारा राजकुमार आसमान से उतरकर आया था?
19: हाँ। हंस क्यों रहे हो?
18: आसमान से तो उतर कर मैं आया था।
19: अरे हाँ, और अभी अभी तुम मेरी तरफ देख रहे थे।
18: मेरी आंखें कब से एक सवाल लेकर तुम्हें देख रही हैं।
19: कौन सा सवाल?

0: और दोस्तों ये तोहफा था अहले मिडिल्सब्रा के लिए, हमारी प्यारी सी बिटिया सुमैरा जो ब्रेडफोर्ड 3 में हमें सुन रही हैं उनका। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और हमारी वो प्यारी सी बहना जो हमें ढेरों दुआओं से नवाजती हैं ब्रेडफोर्ड 18 में शहनाज का तोहफा उनकी नज़र करें, एक बड़ी खूबसूरत सी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं। ये खूबसूरत पेशकार हैं रेडियो के, हमारे रेडियो से भी मुंसलिक रहे हैं और दूसरे रेडियो पे भी अपने फ़न का मुजाहरा कर चुके हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इल्म है कि हमारे ये खूबसूरत मेहमान जिन्हें आप सब खालिद शाम के नाम से जानते हैं एक बहुत खूबसूरत शायर भी हैं, और हाल ही में इनका मजमुआ कलाम शायर के नाम से आप सबके हाथों तक पहुंचा है। तो आइए हम आपकी मुलाकात खालिद शाम साहब से कराते हैं और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि अपने इस मजमुआ कलाम से हमें कुछ मरहमत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रिफत भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तारीफ कर दी, इसके लायक नहीं हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नहीं खालिद, आपके जो सोच और फिक्र है मैं आपकी ज़बानी अशार सुन चुका हूँ इसलिए तारीफ कर रहा हूँ, इसमें कतन कोई मुबालगा आरई नहीं है।
1: वो सही बात है, सही बात है, मैं खुद को कभी भी अपने इस काबिल नहीं समझता, पता नहीं कहाँ से अल्लाह ने ये अता कर दिया। जैसे
0: ये वदियत किया जाता है मियां, ये हर एक को नहीं होता, वदियत होती है ऊपर से और फिर ये तोहफा आप तक पहुंच जाता है कि आपके कलम में ये जसारत पैदा कर दी जाती है कि वो आपके ख्यालात को कलमबंद करे। अता कीजिए, बिस्मिल्लाह। और सबसे पहले तो खालिद आपको बहुत बहुत मुबारक हो मजमुए कलाम की। अच्छा अच्छा,
1: एक छोटी सी गजल और एक कथा सुनाऊंगा।
0: जी जी,
1: लिखा है कि कुछ चेहरे धुंधलाने से लगे।
0: बेटा मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, बाद में लिंक करता
1: हूँ। कुछ चेहरे धुंधलाने से लगे हैं, भूले हुए लोग याद आने लगे। कुछ चेहरे धुंधलाने से लगे हैं, भूले हुए लोग याद आने लगे।
0: आहा, वाह वाह वाह वाह।
1: मैं फिर से कह दूं क्योंकि थोड़ी मरकल में फोन में कोई गड़बड़ हो रही है।
0: जी जी, बोलिए बोलिए, अता कीजिए।
1: आवाज आपका सही पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही?
0: जी फरमाइए।
1: कुछ चेहरे धुंधलाने से लगे हैं,
0: कुछ चेहरे धुंधलाने से लगे हैं। पढ़िए बिस्मिल्लाह, बिल्कुल क्लियर आवाज है।
1: आवाज आ रही है?
0: जी जी बिल्कुल क्लियर है।
1: अच्छा अच्छा, रास्तों की धूल बना गया है वो हमें।
0: आहा,
1: रास्तों की धूल बना गया है वो हमें।
0: वाह,
1: अब लोग ठोकरों से उड़ाने लगे।
0: वाह है, आय है, अता कीजिए अता कीजिए, खूबसूरत से है। वाह वाह वाह वाह,
1: रास्तों की धूल बना गया है वो हमें।
0: आहा, रास्तों की धूल बना गया है वो हमें,
1: अब लोग ठोकरों से उड़ाने लगे।
0: वाह वाह वाह वाह भाई, वाह वाह वाह वाह।
1: आखिरी इशार है कि रोक ले न बहा आंसू अब और ज्यादा।
0: आहा, रोक ले न बहा, क्या खूबसूरत बात है, क्या मिसरा है।
1: रोक ले न बहा आंसू अब और ज्यादा।
0: आहा,
1: हमें दिल और हम दिल को समझाने लगे हैं।
0: आहा, हमें दिल और क्या तजाद लफ्जी है भाई, वाह वाह वाह वाह, अता कीजिए अता कीजिए।
1: रोक ले न बहा आंसू अब और ज्यादा।
0: आहा,
1: हमें दिल और हम दिल को समझाने लगे हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: एक कथा है।
0: जी अता कीजिए।
1: एक कथा है कि जो पास आकर बहलाने वाले थे,
0: जो पास आकर बहलाने वाले थे,
1: वो जो पास आकर बहलाने वाले थे वही लोग मुझको रुलाने वाले थे।
0: अरे है, क्या क्या छोटी बहर में खूबसूरत शेर है भाई, वाह वाह वाह वाह, अता कीजिए अता कीजिए।
1: जो पास आकर बहलाने वाले थे,
0: आहा,
1: वही लोग मुझको
0: रुलाने वाले थे।
1: जरा غور فرمائیے گا کہ بجھی آگ سے آشیانہ جل گیا میرا, بجھی آگ سے آشیانہ جل گیا میرا, میرے اپنے ہی راکھ سلگانے والے.
0: کیا بات ہے, کیا خیال ہے بھائی, واہ واہ واہ واہ واہ واہ, جیتے رہیے جیتے رہیے خالد.
1: بہت شکریہ جناب صاحب سے, یہ جو آپ کی خدمت میں پیش کی, امید ہے سننے والوں کو پسند آئے ہوں گے.
0: اور آپ نہیں, خالد آپ مجھے اپنی کتاب بھیجیے, میں اس پہ کتاب پہ تبصرہ کروں گا انشاءاللہ پڑھنے کے بعد.
1: جی
0: آپ اپنی کتاب مجھے روانہ کریں تو میں پڑھنے کے بعد اس پر تبصرہ بھی کروں گا انشاءاللہ. ضرور ضرور, آپ کی آمد کا بہت شکریہ, اور آپ کو ایک مرتبہ پھر آپ کے مجموعہ کلام کی آمد پر ڈھیروں مبارکباد. اللہ حافظ, اللہ حافظ. اور دوستو آپ تھے خالد شام صاحب, گو انہوں نے بڑا مختصر کلام آپ تک پہنچایا, لیکن ہم انہیں کسی دن اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کریں گے اور ان سے ان کا کلام سنیں گے. بہت خوبصورت خیال اور بہت خوبصورت فکر انگیز اشعار آپ کے مجموعہ کلام میں یقیناً ہوں گے. اور اب ہم چلتے ہیں, دیکھیے ہم بھول ہی گئے کہاں جانا تھا ہمیں. ہاں ہاں ہاں, بریڈفورڈ 18. میں جو گیت لگاتا ہوں اس کے بعد ٹک کر دیتا ہوں, تو اس سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کہاں جانا ہے. ہمیں جانا ہے بریڈفورڈ 18, اور جہاں موجود ہیں ہماری بہت پیاری سی بہنا شہناز. جیتی رہو میری بہنا, اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے, صحت سے رکھے, اور بچوں کی بہاریں دیکھو. کہتی ہیں کہ رفعت بھائی صرف یہ دعا سننے کے لیے میں فون کرتی ہوں, اب میرے بزرگ موجود نہیں رہے ہیں اور دعائیں دینے والے نہ ہوں تو بڑی ایک زندگی میں کمی سی رہتی ہے. اللہ سلامت رکھے تمہیں, ہماری ڈھیروں دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں کہ تم نے ہمیں اتنا بڑا رتبہ عطا کیا ہے کہ بزرگ تسلیم کیا ہے. جیتی رہو شہناز بٹیا. اور یہ رہا وہ تحفہ جو تم نے سننا چاہا تھا, اور شہناز ہمیشہ گفتگو کے اختتام پر کہتی ہیں کہ بھائی آپ کی وجہ سے میری بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. لو بچپن کی یادوں کو تازہ کرو. جیتی رہو.

0: और दोस्तों आप सुन रहे थे हमारी प्यारी सी बहना शहनाज की पसंद, आवाज आलमगीर की थी। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आलमगीर को सेहत अता फरमाए। आजकल काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत नासाज है और आजकल ज़रा निस्बतन ज़्यादा है कि ये खूबसूरत सहरंगेज आवाज़ का मालिक जो अमेरिका शिफ्ट हो चुका है वहाँ उनकी तबीयत ख़राब है। गाहे बगाहे पाकिस्तान तशरीफ़ लाते रहे हैं लेकिन अब तबीयत की नासाजी की बिना पर काफ़ी दिनों से उन्होंने पाकिस्तान का चक्कर भी नहीं लगाया है। आप सबकी दुआएं इनके साथ रहें और अल्लाह ताला इन्हें सेहत कामला और सेहत आजला नसीब फरमाए। कमर्शियल के बाद हम आपको लिए चलेंगे ये अपने ओल्डम, जहां मोहम्मद अयूब चौहान साहब ने जो गीत सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है उनका तोहफा उनकी नज़र करेंगे। आप सुन रहे हैं गज़ल उसने छेड़ी, मैं हूँ रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक और उसके बाद हम आपसे और अपने उन अहबाब से जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं मुखातिब होंगे और उनका तोहफा भी उनकी नज़र करेंगे। मैं आप सबकी मोहब्बतों का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि आप जिस मोहब्बत से हम इन्हें कहते हैं नादीदा लिसनर और सोते मुजाहिद, एक कसीर तादाद इस वक्त भी हमारे हमराह मौजूद है और इनका तोहफा भी ड्यू है हम पर, इंशाल्लाह ज़रूर शामिल प्रोग्राम करेंगे। बढ़ते हैं कमर्शियल की जानिब।
1: And online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: And the winner is... Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
8: Turab Hyder Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki atagrayon se dili Eid Mubarak.
7: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
9: Aapke dilon mein ras kholne wali sadaaye dil nawaz.
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड,

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: और दोस्तों, आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर, यॉर्कशायर की सचिन वादी में और दुनिया के चार कोनों में ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। इससे पहले कि हम आपको ओल्डहम लेकर चलें, हम आपको बर्नले लिए चलते हैं, जहां से हमारे मोहतरम लिसनर और कॉलर जनाब शकील साहब हमारे हमराह मौजूद हैं। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
10: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
9: वाला इबादिल्लाहि सालेहीन। शकील भाई, कैसे हैं आप?
10: ये अल्लाह की मेहरबानी, आपकी दुआएं हैं। आप सुनाएं, कैसे हैं?
9: बस जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। हम आपको ताखीर से दे रहे हैं, आपको ईद की, ईद उल अजहा की ढेरों मुबारकबाद।
10: आपको भी बहुत बहुत, तमाम सुनने वालों को भी बहुत बहुत
9: मुबारकबाद। जी जी, वालेकुम अस्सलाम।
10: शाम साहब आए थे, उनको भी मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
9: वालेकुम अस्सलाम।
10: खालिद सलीमी साहब है, सूफी अब्दुल करीम साहब, रिजवान रिजवी उनकी अलिया है, चौधरी मुजफ्फर साहब है, चौधरी रुखसार साहब, नवीद भाई हमारे आशमी हाउस वाले, हमायूं परवेज साहब, तसीम साहब मजीद भाई, वसीम शाह है, फिजर भाई, अला शबी अमन नकवी साहब है, महबूब अलाई शाह साहब, सबको से अयूब भाई को भी सलाम अलैकुम।
9: आपका मोहब्बत भरा सलाम आपके तमाम अहबाब तक पहुंचा है।
10: शुक्रिया,
9: खुश आमदीद।
10: एक शेर है फरी या नकवी, वो कहते हैं, हम तोहफे में घड़ियां तो दे देते हैं,
9: हम तोहफे में घड़ियां तो दे देते हैं,
10: एक दूजे को वक्त नहीं दे पाते।
9: क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह वाह भाई, वाह वाह वाह वाह, अता कीजिए।
10: हम तोहफे में घड़ियां तो दे देते हैं,
9: आहा,
10: एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते।
9: वाह वाह वाह वाह।
10: तो छोटी सी गजल भी उनकी है।
9: जी अता कीजिए।
10: उसे भूलने का सितम कर रहे हैं,
9: आहा,
10: उसे भूलने का सितम कर रहे हैं, हम अपनी अज़ियत को कम कर रहे हैं,
9: हम अपनी अज़ियत को कम कर रहे हैं। भाई वाह वाह, क्या इंतखाब है।
10: हमारी निगाहों से सपने चुरा कर,
9: आहा,
10: तो किसी की निगाहों में जम कर रहे हैं।
9: वाह वाह वाह वाह, हमारी निगाहों से सपने, अता कीजिए ये शेर।
10: हमारी निगाहों से सपने चुरा कर, तो किसी की निगाहों में जम कर रहे हैं।
9: वाह वाह वाह वाह।
10: या तेरे वहाँ की हर एक नारवाई,
9: आहा,
10: हम अपने लहू से रकम कर रहे हैं।
9: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
10: भली क्यों लगे हमको खुशियों की दस्तक, भली क्यों लगे हमको खुशियों की दस्तक, अभी हम मोहब्बत का गम कर रहे हैं।
9: क्या खूबसूरत शेर है भैया, अता कीजिए। वाह वाह वाह वाह।
10: भली क्यों लगे हमको खुशियों की दस्तक, अभी हम मोहब्बत का गम कर रहे हैं।
9: वाह वाह वाह वाह।
10: किसे दुख सुनाए सभी तो यहाँ पर,
9: अता कीजिए। वाह वाह वाह।
10: भले लगे दिन तक अभी हम मोहब्बत का गम कर रहे हैं।
9: वाह वाह
10: कि दुख सुनाए थी तो जहाँ

0: जीना दिखाकर,
1: सुखन को सियासत का जीना दिखाकर,
0: तमाशा ये है
1: करम कर रहे हैं। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाता कीजिए।
0: सुखन को सियासत का जीना दिखाकर, तमाशा ये है ले करम कर रहे हैं।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह।
0: एक गजल है मैथी प्रताप घड़ी उनकी है।
1: जी जी अता कीजिए अता कीजिए।
0: दुनिया फूलों की शहदाई कांटों को बनाए कौन,
1: दुनिया फूलों की शहदाई, क्या खूबसूरत अंदाज है।
0: दुनिया फूलों की शहदाई कांटों को अपनाए कौन, अच्छे वक्त के साथी सब हैं दुख में हाथ बटाए कौन।
1: भाई वाह वाह वाह वाह, क्या मतलब है, अता कीजिए अता कीजिए।
0: दुनिया फूलों की शहदाई कांटों को अपनाए कौन, अच्छे वक्त के साथी सब हैं दुख में हाथ बटाए कौन,
1: हाथ बटाए कौन। वाह वाह वाह वाह।
0: असरे नौ का शायर अपनी जात के खोल में है माबूस, असरे नौ का शायर अपनी जात के खोल में है माबूस, फिक्रो फन के फूल खिलाकर शेर गजल महकाए कौन।
1: क्या बात है, क्या इंतखाब है भाई, वाह वाह वाह वाह।
0: लफ्जों को तलवार बनाकर खेल रहे हैं फरजाने, क्या होगा अंजामे मुआने समझे और समझाए कौन। उन पर कैसे उंगली उठे, उन पर कैसे तोमत आए, उन पर कैसे उंगली उठे, उन पर कैसे तोमत आए, वो तो फकीर शहर हैं यारो, उनका जुर्म बताए कौन।
1: आहा भाई क्या बात है, वो तो फकीर शहर है यारो, उनका जुर्म बताए कौन। आता कीजिए शेर।
0: उन पर कैसे उंगली उठे, उन पर कैसे तो मत आए, वो तो फकीर शहर है यारो, उनका जुर्म बताए कौन।
1: आहा
0: तुमने दिए जलाए, हमने अपना खून जलाया है,
1: तुमने
0: दिए जलाए, हमने अपना खून जलाया है, कल तारीख लिखेगी इसको आज ये बात बढ़ाए कौन।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या इंतखाब है भाई, जितनी दादी जाए कम है। वाह वाह वाह वाह।
0: शुक्रिया। तुमने दिए जलाए, हमने अपना खून जलाया है, कल तारीख लिखेगी इसको आज ये बात बढ़ाए कौन।
1: क्या बात है।
0: हम सब मुजरिम हम सब मुनसिफ कौन डरे, किस पे इल्जाम, तलख बहुत है दामे सदाकत, सॉरी तलख बहुत है जामे सदाकत, उसको हाथ लगाए कौन।
1: तलख बहुत है जामे सदाकत, उसको हाथ लगाए कौन। भाई क्या इंतखाब है, वाह वाह वाह वाह।
0: हम सब मुजरिम हम सब मुनसिफ कौन डरे, किस पे इल्जाम, तलख बहुत है जामे सदाकत, उसको हाथ लगाए कौन।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
0: शुक्रिया। आखिरी शेर सुनते हैं।
1: अता कीजिए।
0: हर मीना बाजार से बहती आंख बचा कर गुजरा हूँ, हर मीना बाजार से बहती आंख बचा कर गुजरा हूँ, पेट के रोग से फुर्सत कब से, दिल के रोग लगा दिल का रोग लगाए कौन।
1: भाई वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
0: तो ठीक है, बड़ी मेहरबानी,
1: बहुत शुक्रिया। और शकील भाई बेइंतहा शुक्रिया याद दहानी का, कि हमारे अजीम फोक सिंगर और फिल्मी सिंगर जनाब इनायत हुसैन भट्टी साहब की कल बरसी थी।
0: शुक्रिया।
1: हम सब मिलके दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, मगफिरत फरमाए। मैं उनसे मिला शकील भाई, मैंने इतना इज्जो इनके साथ से पता ही नहीं चलता कि ये इतना बड़ा फनकार है, बहुत अजीम फनकार थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपने जो गीत कहा है वो जरूर शामिल प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हमारे शकील भाई बेइंतहा अदब से और फन और फनकारों से लगाव रखते हैं। देखिए, उन्होंने याद दहानी कराई कि इस अजीम गुलकार इनायत हुसैन भट्टी की कल बरसी थी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता

और दोस्तों आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मैं हूं रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। ये पसंद थी हमारी काबिल एहतराम लिसनर डॉक्टर माहरुख साहिबा की, और कमर्शियल के बाद हम आपकी मुलाकात एक बड़ी खूबसूरत सी शख्सियत से कराएंगे, क्योंकि वो एक बहुत खूबसूरत सा तोहफ़ा आपके लिए लाए हैं। तो 2 मिनट में तो ये मुमकिन नहीं था कि वो अपना तोहफ़ा आप तक पहुंचा सकें, सो कमर्शियल के फौरन बाद आपकी मुलाकात हम कराएंगे अपने खूबसूरत साथी पेशकार जनाब महबूब इलाही से, जो तमाम सामीन और नाज़रीन के लिए खूबसूरत गीत का तोहफ़ा लेकर आए हैं। आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर, साथ ही साथ हमारे वो अहबाब भी जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, हम उन्हें भी दिल की तमाम तर गहराइयों से खुश आमदीद कह रहे हैं, और उनके लिए भी यकीनन हम एक तोहफ़ा पेश करेंगे। कमर्शियल के बाद आपकी मुलाकात होगी महबूब इलाही साहब से, जो खूबसूरत तोहफे के साथ आपके साथ मौजूद होंगे, और उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे बनले, जहाँ पर शकील साहब अपनी पसंद का गीत सुनने के मुंतज़िर हैं, जिन्होंने ये बताया है कि जिस खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने ये गीत मुंतखब किया है, कल उनकी बरसी थी। जनाब इनायत हुसैन भट्टी मरहूम, जिन्होंने बेशुमार फिल्मों के लिए भी गाए और बहुत ही पाकिस्तान के मारूफ फोक सिंगर्स में उनका शुमार भी होता है, और दुनिया के चार कोनों में उन्होंने अपने फ़न का मुजाहरा भी किया है। सो चलते हैं कमर्शियल के वक्फे की जानिब, और उसके फौरन बाद महबूब इलाही साहब की सहरंगेज़ आवाज़ में उनका तोहफ़ा तमाम सामईन और नाज़रीन के नाम ईद उल अज़हा के इस पुरमसरत मौके पर।

0: on 413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
15: और आइए दोस्तों, बिना किसी ताखीर के हम आपकी मुलाकात कराते हैं अपने खूबसूरत साथी पेशकार महबूब इलाही से, और जो खूबसूरत आवाज़ में आप सबके लिए तोहफा भी लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम।
16: वालेकुम सलाम।
15: मैं माजरत खा हूँ कि आपको इतनी देर तक इंतज़ार करना पड़ा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं महबूब।
16: थैंक यू जी, बहुत कोई बात नहीं है, और हमारी तरफ से सभी सामईन को, आपको भी ईद की भी हज की बहुत बहुत मुबारक।
15: आपको भी और आपके अहल खाना को भी हमारी तरफ से ईद की और हज की ढेरों मुबारकबाद।
16: थैंक यू जी। आज मैंने सोचा कि ईद के मौके पर गीत है मेहंदी हसन का।
15: जी जी,
16: तो वही गीत जी।
15: जरूर जरूर सर, आंखों पर।
16: तो ये नजर करना चाहेंगे, भाई शकील हैं, चौधरी रुखसार हैं, चौधरी मुजफ्फर हैं, और सब सामीन और आपके नाम
15: बहुत मोहब्बत।
16: इसको करते हैं जी,
15: जी
16: ईद का दिन है, ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए, रस में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए, रस में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है, हम तो सरकार के घर आए हैं मिलने के लिए, हम तो सरकार के घर आए हैं मिलने के लिए, दिल कली की तरह बेताब है खिलने के लिए, लिए इतना ही सही, रस में दुनिया ही सही, रस में दुनिया ही सही, एक हल्की सी हंसी लब पे सजा कर मिली है, रस में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए, ईद का दिन है, ईद मिलने के लिए सामने आना होगा, ईद मिलने के लिए सामने आना होगा, शर्म के सारे असूलों को भुलाना होगा, प्यार का रखिए बरम, दिल पे कीजिए न सितम, दिल पे कीजिए न सितम, कम से कम आज के दिन आंख मिला कर मिलिए, रस में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए, रस में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है।
15: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैंने माइक इसलिए बंद कर दिया था कि आपकी आवाज साफ और वाजे लोगों तक पहुंच सके।
16: थैंक यू जी,
15: बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का महबूब, और जरा ध्यान से खाइएगा
16: जी,
15: एहतियात रखनी है।
16: ओके जी,
15: बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहो, अल्लाह खुश रखे, बहुत खूबसूरत अल्लाह ने आवाज दी है
16: के जी, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमेशा सलामत रखे,
15: आमीन आमीन, अल्लाह हाफिज़,
16: अल्लाह हाफिज़।
15: दोस्तों, असल में महबूब इलाही साहब का वक्त बहुत कीमती होता है, और मुझे इस कदर शर्मिंदगी हो रही थी, और मैं नहीं चाहता था कि इतना खूबसूरत तोहफा वो लाए हैं आपके लिए और वो अधूरा रह जाए, और कमर्शल भी बजाना बेइंतहा ज़रूरी है, ज़ाहिर रेडियो कमर्शल से ही चला करते हैं, सो हम उनका बड़ा अहतमाम करते हैं। महबूब इलाही, जीते रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह करे ज़ोर बयां और ज़्यादा। और दोस्तों, अब हम चल रहे हैं उस खूबसूरत गीत की जानिब जो पाकिस्तान के उस अजीम खूबसूरत फोक सिंगर और फिल्मी फनकार जनाब इनायत हुसैन भट्टी मरहूम की आवाज़ में है। इनायत हुसैन भट्टी मरहूम न सिर्फ बेइंतहा खूबसूरत, अल्लाह ताला ने उन्हें लहन से नवाजा था, खूबसूरत आवाज़ अता की थी, वो बेशुमार फिल्मों में हीरो भी आए, यानी उनकी शख्सियत बिल्कुल प्यास के छिलकों की तरह है कि उतारते जाइए और नए नए अंदाज नज़र आते रहेंगे। सो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनायत हुसैन भट्टी साहब, जिनकी शकील साहब ने बताया कल बरसी थी, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला مقام عطا فرمائے، مغفرت فرمائے، میری ملاقات ان سے ہوئی اور آپ یقین جانیے درویش صفت آدمی تھے، ان سے مل کر احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ شخص اتنا بڑا فنکار ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا، اور یہ دیدہور تھے عنایت حسین بھٹی صاحب۔ بے انتہا شکریہ شکیل بھائی آپ کا نشاندہی کا، اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تحفہ لے کر حاضر ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو لیے چلیں گے ڈونکاسٹر سٹی، جہاں موجود ہیں ہمارے محترم سراج منیر صاحب، ان کا تحفہ ان کی نظر کریں گے۔

दोस्तों प्रणाम गजल उसने छेड़ी खत्म की जानी बढ़ रहा है। ये पसंद थी हमारे मोहतरम शकील साहब की, जो बंदे से हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और मौजूद हैं। अब हम चलते हैं उस गीत की जानिब जिसे सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है सिराज मुनीर साहब ने, और आप तशरीफ लाए हैं डॉनकास्टर सिटी से। कहते हैं कि बस प्रोग्राम सुनता रहता हूं मैं और लुत्फ उठाता रहता हूं, एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिल जाता है। ये आपकी मोहब्बत है, चाहत है सिराज मुनीर साहब, आपको और अहले डॉनकास्टर को मेरा सलाम पहुंचे। साथ ही साथ हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे जनाब शहरियार साहब को, जो तशरीफ़ लाए हैं नॉर्थ हॉल लंदन से और अपने अहले खाना के हमरा हमारी बज़ में शामिल हैं। कहते हैं कि अय्यूब भाई ने अपने प्रोग्राम में अहमद फराज की एक गज़ल पढ़ी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे ये गज़ल याद आ गई, तो क्या मुमकिन है वही गज़ल आप हमें सुनवा दें? क्यों नहीं सराकों पर, लेकिन अभी नहीं, अभी तो हम चल रहे हैं डॉनकास्टर सिटी जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम जनाब सिराज मुनीर साहब और सुनना चाहते हैं ये गीत। सिराज मुनीर साहब आमद का बेइंतहा शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत से रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।

0: Action Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
9: Tora Bhadar Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki ata garaiyon se Dili Eid Mubarak.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
10: Aapke dilon mein ras kholne wali sadaein dil nawaz.
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257।
13: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबी कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो,
7: यू आर लिसनिंग टू ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM एंड ऑनलाइन।
8: लिसन ऑन योर पीसी और लैपटॉप, द बेस्ट एशियन म्यूजिक ऑनलाइन।
9: जिसको चाहा था न पाया, जो न चाहा था मिला। जिसको चाहा था न पाया, जो न चाहा था मिला। सोचता हूँ जिंदगी में खोया क्या और क्या मिला।

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
14: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले, तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब दिल खिले तब गुल मिले, मिले मिले मिले मिले दिल मिले, खिले खिले खिले खिले गुल खिले।

0: इनसे क्या लड़ रहे हो? ये तो मर्द हैं, पहले इनसे तो निपटो।
1: अरे हलीमा, ए मीना, ए सलमा, अरे चिकने छोरों की महफिल लगी है रे, जल्दी आ जल्दी हामा।
2: हाय हाय, हमसे निपटो री, हमसे निपटो।
1: हाय हाय, निपटो नहीं रे, लिपटो लिपटो
3: लिपटो रे, लिपटो।
4: अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ा
1: तो हाय हाय, क्या कर लेगा हमारा?
4: तो फोड़ दूंगा।
1: क्या फोड़ेगा
4: सर?

दिन लगा दो।

0: के दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग बारी।
2: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
3: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
1: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 0788542839, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
4: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
3: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
4: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
3: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
4: 07548419678।
3: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: You're listening to Bradford Asian Radio,
9: 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भाला।
8: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 495555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर,
12: मैनिंगम सुपर स्टोर।
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
3: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
9: Tora Bhadar Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki ata garaiyon se dil Eid Mubarak.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
10: Aapke dilon mein ras kholne wali sadaaye dil nawaz.
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्स अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
12: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
14: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
14: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
15: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
9: Tora Bhadar Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki ata garaiyon se Dili Eid Mubarak.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
10: Aapke dilon mein ras kholne wali sadaein dil nawaz.
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
13: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच मोगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट।
3: यू आर लिसनिंग टू ब्रॉडफिट एशियन रेडियो,
4: 1413 AM एंड ऑनलाइन।
5: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे,

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: You're listening to Bradford Asian Radio.
0: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: White Abbey Road पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
8: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
10: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
9: सोफी ज्वेलर्स
10: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
14: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
14: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
15: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
0: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online
2: Listen on your PC or laptop the best Asian music online

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
9: Tora Bhadar Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki ata garaiyon se dili Eid Mubarak.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
10: Aapke dilon mein ras kholne wali sadaiyan dil nawaz.
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257।
13: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274 491 442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
9: Tora Bhadar Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki ata garaiyon se dili Eid Mubarak.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
10: Aapke dilon mein ras kholne wali sadaaye dil nawaz.
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: ये 4-5 मिनट के लिए ये गजल पेश कर रहा हूँ।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274 491 442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201 679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
8: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
0: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
10: Tora Bhadar Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki ataa garaiyon se Dili Eid Mubarak.
9: Mubarak Eid Mubarak.
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3499, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: यू आर लिस्निंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
8: 1413 AM एंड ऑनलाइन। You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
12: ओपन 7 days 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
14: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
14: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
15: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
9: Tora Bhadar Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki ata garaiyon se Dili Eid Mubarak.
8: Mubarak Eid Mubarak.
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
13: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
1: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइन।
3: यू आर लिसनिंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children, to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
14: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
14: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
15: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
16: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
9: Tora Bhadar Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki atagrayon se Dili Eid Mubarak.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
10: Aapke dilon mein ras kholne wali sadaaye dil nawaz.
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स।
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: 1413 AM and online.
8: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.